0: मीडियम वेव 1584 किलोहर्ट्ज़, 684 किलोहर्ट्ज़, एफएम 100.1 मेगाहर्ट्ज़
1: विदाउट बैंक दर 5.5% पर ही है। बैंक ने चालू वित्त वर्ष के लिए सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि अनुमान को पहले के 6.9% से घटाकर 6.6% कर दिया है। बैंक ने मुद्रास्फीति के अपने पूर्वानुमान को भी 4.6% से बढ़ाकर 5.1% किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात के सूरत में सड़क, बिजली और औद्योगिक क्षेत्रों में 18,800 करोड़ रुपए से अधिक की कई विकास परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे। श्री मोदी पहले हजीरा में औद्योगिक और अवसंरचना परियोजनाओं की समीक्षा करेंगे। दोपहर में श्री मोदी एक विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे। हमारी संवाददाता ने बताया है कि प्रधानमंत्री लगभग 2,970 करोड़ रुपए के विभिन्न परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे।
2: क्षेत्रीय बुनियादी ढांचे को बड़ी गति देते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात और महाराष्ट्र के बीच कनेक्टिविटी को बढ़ाने के लिए वडोदरा मुंबई एक्सप्रेसवे के महत्वपूर्ण पैकेज राष्ट्र को समर्पित करेंगे। वे राष्ट्रीय राजमार्ग 56 के महत्वपूर्ण खंडों को 4 लेन बनाने की भी आधारशिला रखेंगे, जिससे आदिवासी क्षेत्रों और स्टैच्यू ऑफ यूनिटी तक पहुँच में सुधार होगा। जनकल्याण के तहत प्रधानमंत्री सूरत में 24 घंटे आपातकालीन और ट्रॉमा केयर सुविधाओं से लैस एक आधुनिक 200 बिस्तरों वाले ईएसआईसी अस्पताल का भी उद्घाटन करेंगे। अपर्णा खुंट, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
1: प्रधानमंत्री आज शाम दमन भी जाएंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 23 जून को नागरिक अलंकरण समारोह में इस वर्ष के 65% व्यक्तियों को पद्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। इससे पहले पिछले महीने श्रीमती मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में आयोजित समारोह में 66% व्यक्तियों को पद्म पुरस्कार प्रदान किए थे। इस वर्ष राष्ट्रपति ने 5 पद्म विभूषण, 13 पद्म भूषण और 113 पद्मश्री पुरस्कारों सहित कुल 131 पद्म पुरस्कारों को स्वीकृति दी है। केंद्रीय मंत्री डॉ जितेंद्र सिंह आज जम्मू में एक नए क्षेत्रीय मौसम विज्ञान केंद्र की स्थापना के औपचारिक घोषणा करेंगे। ये जम्मू कश्मीर, लद्दाख और हिमाचल प्रदेश में मौसम पूर्वानुमान और आपदा तैयारियों को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। कर्नाटक के जल संसाधन मंत्री रामलिंगा रेड्डी ने

आज अपने मंत्रालय के आवंटन को लेकर मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है। बेंगलुरु में संवाददाताओं से बात करते हुए उन्होंने कहा कि उन्हें बेंगलुरु विकास मंत्रालय देने का वादा किया गया था, लेकिन उन्हें जल संसाधन मंत्रालय दिया गया, इसलिए उन्होंने पद से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने कहा कि वे विधायक के रूप में काम करते रहेंगे और कांग्रेस पार्टी में बने रहेंगे। आज विश्व पर्यावरण दिवस है। पृथ्वी पर सभी जीवों के जीवन की उपयोगिता बनाए रखने और संरक्षण के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के अंतर्गत ये दिवस मनाया जाता है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, केंद्रीय पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने विश्व पर्यावरण दिवस की शुभकामनाएं दी हैं। प्रधानमंत्री ने कहा है कि एक पेड़ माँ के नाम जैसी पहलों ने प्रतिवर्ष लगभग 1.1 लाख हेक्टेयर वन क्षेत्र बढ़ाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि ये दिन पर्यावरण संरक्षण और सतत विकास को बढ़ावा देने की प्रतिबद्धता को व्यक्त करने का प्रतीक है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अमेरिका और ईरान के बीच वार्ता जारी है। उन्होंने कहा कि किसी भी समझौते में स्थायी रूप से ईरान को परमाणु हथियार हासिल करने से रोका जाना चाहिए। घरेलू शेयर बाजार में संवेदी सूचकांक के शुरुआती कारोबार में आज वृद्धि का रुख रहा। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 121 अंक के उछाल के साथ 74,461 पर था। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

London. श्रोताओं, जीवन एक सुंदर यात्रा है जिसमें हर पड़ाव हमें कुछ नया सिखाता है, कुछ नए अनुभव देता है और कुछ ऐसी स्मृतियां सौंप जाता है जो जीवन भर हमारा साथ निभाती हैं। समय के साथ मौसम बदलते हैं, परिस्थितियां बदलती हैं, पीढ़ियां बदलती हैं, लेकिन परिवारों को जोड़कर रखने वाला प्रेम, अपनापन और संस्कार कभी नहीं बदलते। ये वो मूल्य हैं जो हमारे घर को केवल एक मकान नहीं बल्कि एक सजीव और खुशहाल घर आंगन बनाते हैं। इन्हीं रिश्तों और संवेदनाओं को लेकर हम रोज आपके साथ आते हैं। और नमस्कार श्रोताओं, मैं हूँ श्रुति बुरी और आप सुन रहे हैं अपना प्रिय कार्यक्रम घर आंगन FM गोल्ड 100.1 MHz पर, इंद्रप्रस्थ 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज, DRM 810 किलोहर्ट्ज पर। शुक्रवार का ये अंक एक कदम बुजुर्गों की ओर सभी वरिष्ठ जन को समर्पित है, जहां हम बात करते हैं उनके स्वास्थ्य, सुख, सम्मान, सुरक्षा और जीवन से जुड़े सभी विभिन्न पहलुओं पर। यदि आप इस कार्यक्रम के विषयों पर अपनी कोई राय, सुझाव या अनुभव हमसे साझा करना चाहते हैं तो हमें ईमेल कर सकते हैं fmgoldga@gmail.com पर। तो आइए मिलकर बढ़ाते हैं एक कदम अपने बुजुर्गों की ओर इस गीत के साथ। कर्तव्य फिल्म में अभी आप लता मंगेशकर को सुन रहे हैं।

0: कर्तव्य फिल्म में अभी आप लता मंगेशकर को सुन रहे थे।
1: नमस्कार, ये आकाशवाणी है। 9 दशक यानी 90 साल जब टीवी का पर्दा कोरा था और इंटरनेट एक सपना, तब धुन की इस लहर ने भारत के हर घर में अपनी जगह बनाई। क्रिकेट के रोमांचक आंखों देखे हाल से लेकर मन की बात के संवाद तक,
2: आसमान में सिर उठाकर घने बादल

0: को चीरकर रोशनी का संकल्प ले। अभी तो सूरज उगा है।
1: आकाशवाणी सिर्फ एक रेडियो स्टेशन नहीं, हर भारतीय के संघर्ष और सफलता का साक्षी है। सूचना, शिक्षा और मनोरंजन का सबसे भरोसेमंद साथी। आज भी पहाड़ों की चोटी से लेकर सुदूर गांव तक हमारी आवाज ही आपकी पहचान है।

और साथियों, अब समय है सुविचार का। बदलते समय में सोच और कर्म दोनों का रूप बदलता है और यही हमारे समाज को आगे बढ़ाता है। आज का सुविचार हमने कवि नागार्जुन से लिया है, जिन्होंने कहा है कि परंपराओं को तोड़ना ही एक परंपरा है। परिवर्तन न तो विद्रोह है न केवल नूतनवाद, ये सहजता, जागरूकता और समय के अनुसार बेजान और पुरानी हो चुकी रीतियों को बदलना है। जब कोई परंपरा लोगों को इज्जत और स्वतंत्रता देती है तो उसे अपनाना बिल्कुल ठीक है, लेकिन यदि कोई परंपरा मानवता को चोट पहुंचाती है या विकास को रोकती है तो उसे बदलना या छोड़ना ही एक सकारात्मक और जिम्मेदार कदम है। और श्रोताओं, आपको बता दें कि कल हिंदी फिल्म जगत ने एक ऐसे निर्माता को खो दिया जिसने व्यावसायिक सिनेमा को अनेक यादगार फिल्में दी। वरिष्ठ फिल्म निर्माता और केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड CBFC के पूर्व अध्यक्ष पहलाज निहलानी का कल 4 जून को 76 वर्ष की आयु में निधन हो गया। 1982 में हथकड़ी से उन्होंने अपने फिल्मी सफर की शुरुआत की और इसके साथ ही इल्जाम, आग ही आग, पाप की दुनिया, मिट्टी और सोना, शोला और शबनम, आंखें और अंदाज जैसी सफल फिल्मों का निर्माण भी पहलाज निहलानी ने किया। आपको बता दें कि सिनेमा के नियमन और प्रमाणन की प्रक्रिया में भी आपने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और 2015 से 2017 तक CBFC के अध्यक्ष के रूप में आपने कार्य किया। अपने लंबे फिल्मी अनुभव, स्पष्ट विचारों और सिनेमा के प्रति समर्पण के कारण पहलाज निहलानी भारतीय फिल्म उद्योग में सदैव स्मरण किए जाएंगे। उनके निधन से हिंदी सिनेमा ने अपना एक महत्वपूर्ण अध्याय खो दिया है। हम उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और शत शत नमन करते हैं। और श्रद्धांजलि स्वरूप आइए सुनते हैं उन्हीं की फिल्म का ये गीत। इल्जाम फिल्म में ये हैं आशा भोसले और अमित कुमार।

साथियों, हमारी हवा, पानी और मिट्टी पर मानव गतिविधियों का असर बढ़ रहा है। फैक्ट्रियों का कचरा, प्लास्टिक और गैसों के कारण मौसम बदल रहे हैं और कई पेड़ पौधे और जानवर खतरे में हैं। इसका असर सीधे हमारी सेहत, किसानों की कमाई और हमारी रोजमर्रा की जिंदगी पर होता है। गंदगी हवा सांस की बीमारियां बढ़ाती है, गंदा पानी पेट की बीमारियां फैलाता है और कम होती जैव विविधता फसलों और खेती को नुकसान पहुंचाती है। आज इस महत्वपूर्ण विषय पर इसीलिए हम बात करेंगे क्योंकि आज 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस है। ये दिन संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम द्वारा इसलिए स्थापित किया गया कि पूरी दुनिया प्रकृति की सुरक्षा के लिए जागे और मिलकर काम करे। पर्यावरण रक्षा रोजमर्रा की आदतों का परिणाम है। हमारी रोजमर्रा की छोटी छोटी चुनौतियां दुनिया के बड़े बदलाव बनती हैं। तो आज हम एक वादा करते हैं कि आज से हम हर रोज एक छोटी आदत बदलेंगे और जो आदत आप बदलेंगे उसे हमें लिख भेजिए, हम अपने अगले कार्यक्रम में साझा करेंगे। और श्रोताओं, आज अवैध, अनधिकृत और अनियमित मछली पकड़ने के खिलाफ लड़ाई का भी अंतर्राष्ट्रीय दिवस है। समुद्र हमें रोजाना हजारों टन मछली देता है जो करोड़ों लोगों को रोजगार देती है, लेकिन अगर मछली पकड़ने के नियम तोड़ दिए जाएं तो ये खजाना धीरे धीरे कम हो जाएगा। इसी खतरे को समझकर हर साल 5 जून को अवैध, अनधिकृत और अनियमित मछली पकड़ने के खिलाफ लड़ाई का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। कई मछुआरे बिना परमिट के मना जगहों पर और मना औजारों के साथ मछली पकड़ रहे हैं, जिससे समुद्र के जीव जंतु नष्ट हो रहे हैं और मछलियां कम हो रही हैं। संयुक्त राष्ट्र ने इस दिवस को आधिकारिक तौर पर मान्यता दी और 2018 से इसे दुनिया भर में मनाया जा रहा है। ये दिवस इस संदेश को पहुंचाता है कि मछुआरों को ईमानदारी और कानून के अनुसार मछली पकड़नी चाहिए, बिना छुपाए और बिना नियम तोड़े। इससे समुद्र स्वस्थ रहेगा, मछलियों का भंडार बना रहेगा और आने वाली पीढ़ियों के लिए भी मछली पकड़ना आसान हो जाएगा। जल बिन मछली, मृत्यु बिन बिजली। इस फिल्म में अभी आप लता मंगेशकर को सुन रहे हैं।

दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है, कभी ख्याल आया है कि वो पसंदीदा गाना जो आप सुबह नाश्ते के दौरान रेडियो पर सुनते हैं या गाड़ी चलाते समय सुनते हैं, वो आप तक कैसे पहुंचता है? इसका जवाब है कि जब 1993 में आकाशवाणी ने पहली बार निजी कंपनियों को अपने FM चैनलों पर प्रसारण समय किराए पर देना शुरू किया। 15 अगस्त 1993 को दिल्ली और मुंबई से शुरू हुआ ये कारवां कुछ ही महीनों में चेन्नई, कोलकाता और गोवा जैसे शहरों तक फैल गया। इस नई योजना ने निजी निर्माताओं को पहली बार कार्यक्रम बनाने, विज्ञापन बुक करने और उन्हें आकाशवाणी के FM चैनलों पर प्रसारित करने की अनुमति दी, जिसने रेडियो की दुनिया में निजी संस्थाओं के प्रवेश का द्वार खोल दिया। इस क्रांतिकारी बदलाव के साथ रेडियो के चेहरे में बड़ा परिवर्तन आया। अब श्रोताओं को सुनने को मिलने लगा पश्चिमी संगीत, प्रायोजित कार्यक्रम, गानों का काउंटडाउन और मशहूर हस्तियों के चैट शो, और सभी कुछ शहरी जीवन शैली के अनुरूप। ये पहल भारत में रेडियो निजीकरण की नींव रखने वाली साबित हुई, जिसने बाद में और भी व्यापक बदलावों का रास्ता साफ किया। आज के FM स्टेशन न केवल संगीत और मनोरंजन देते हैं, बल्कि स्वास्थ्य समाचार, ट्रैफिक अपडेट, मौसम की जानकारी और सामाजिक मुद्दों पर भी चर्चा करते हैं। रेडियो आज भी सबसे सस्ता और सुलभ माध्यम बना हुआ है, जो ग्रामीण भारत में भी लाखों श्रोताओं तक पहुंच रहा है। ये 1993 की छोटी सी शुरुआत आज एक विशाल मीडिया उद्योग में बदल चुकी है, जिसने भारत के मीडिया को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया।

बंदिनी फिल्म में अभी आप लता मंगेशकर को सुन रहे थे। श्रोताओं, हर वर्ष 21 जून को मनाया जाने वाला अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस हमें योग के महत्व को समझने और उसे अपने जीवन का हिस्सा बनाने की प्रेरणा देता है। योग केवल शरीर को स्वस्थ रखने का माध्यम नहीं है, बल्कि ये संपूर्ण जीवन को संतुलित और ऊर्जावान बनाने की एक प्राचीन भारतीय पद्धति है। आज जब जीवन शैली में बदलाव, शारीरिक श्रम की कमी और बढ़ती उम्र के कारण अनेक स्वास्थ्य समस्याएं सामने आ रही हैं, तब योग का महत्व और भी बढ़ जाता है। विशेष रूप से वरिष्ठ नागरिकों के लिए योग एक ऐसा सहारा बनकर उभरता है जो उन्हें बेहतर स्वास्थ्य, आत्मविश्वास और सक्रिय जीवन प्रदान कर सकता है। बढ़ती उम्र के साथ शरीर में कई स्वाभाविक परिवर्तन होते हैं। मांसपेशियों की शक्ति कम होने लगती है और शरीर की लचक भी पहले जैसी नहीं रहती। ऐसे में पीठ और गर्दन का दर्द बुजुर्गों की सबसे आम समस्या बन जाता है। लंबे समय तक एक ही मुद्रा में बैठे रहना, शारीरिक गतिविधियों में कमी, गलत ढंग से उठना बैठना या वर्षों की शारीरिक थकान भी इन दर्दों का कारण बन सकती है। कई बार ये दर्द इतना बढ़ जाता है कि दैनिक कार्य करना भी कठिन हो जाता है और व्यक्ति दूसरों पर निर्भर होने लगता है। ऐसी स्थिति में योग एक प्रभावी और सुरक्षित उपाय के रूप में सामने आता है। वरिष्ठ नागरिकों के लिए कुछ सरल योगासन जैसे ताड़ासन, भुजंगासन, मकरासन, शशांकासन और मरजासन जैसे जो प्रशिक्षित योग विशेषज्ञों की सलाह के साथ किए जाते हैं, वो काफी लाभप्रद होते हैं। इसके साथ ही प्राणायाम और गहरी श्वास लेने के अभ्यास से भी शरीर को पर्याप्त ऑक्सीजन मिलती है और मन भी शांत रहता है। हालांकि ये ध्यान रखना बहुत जरूरी है श्रोताओं कि किसी भी प्रकार का योगाभ्यास आपकी स्वास्थ्य स्थिति और चिकित्सकीय सलाह को ध्यान में रखकर ही किया जाना चाहिए। अगर आपको कोई गंभीर समस्या है

या आपका कोई दर्द अत्यधिक ज्यादा है, यानी ज्यादा है, तो उस स्थिति में आपको विशेषज्ञ के मार्गदर्शन में ही योग अभ्यास करना चाहिए। और हम तो यही कहेंगे कि श्रोताओं, आप योग को अपनाएं और सुबह सुबह नीले गगन की जो एक छाया है, जो रोशनी है, उसमें आप किसी बाग बागीचे में जाएं और योगाभ्यास करें और स्वस्थ रहें।

आम्रपाली फिल्म में अभी आप लता मंगेशकर को सुन रहे थे। साथियों, गर्मियों का मौसम अपने साथ धूप की चमक, आम की मिठास और सुबह शाम की हल्की सैर का आनंद लेकर आता है। यही मौसम हमारे वरिष्ठ नागरिकों के लिए कुछ चुनौतियां भी लेकर आता है। उम्र बढ़ने के साथ शरीर की प्यास महसूस करने की क्षमता कम होने लगती है, इसलिए कई बार बुजुर्गों को एहसास ही नहीं होता कि उनके शरीर में पानी की कमी हो रही है। ऐसे में डिहाइड्रेशन एक गंभीर समस्या का रूप ले सकती है। गर्मियों में शरीर को पसीने के माध्यम से पानी और आवश्यक लवण जो होते हैं वो बाहर निकलते रहते हैं और उनकी पूर्ति अगर समय पर न की जाए तो शरीर में कमजोरी, थकान और कई स्वास्थ्य समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। अब

प्रश्न ये उठता है कि डिहाइड्रेशन की पहचान कैसे की जाए। तो कुछ संकेत हैं, जैसे बार बार प्यास लगना, मुंह और गले का सूखना, चक्कर आना, सिर भारी लगना, अत्यधिक थकान महसूस होना और कई बार यूरिन यानी पेशाब का रंग जो है वो गहरा हो जाता है और उसकी मात्रा भी कम हो जाती है। कई बार बुजुर्गों में भ्रम की स्थिति, चिड़चिड़ापन और अचानक कमजोरी भी डिहाइड्रेशन का संकेत हो सकती है। यदि ये लक्षण दिखाई दें तो उन्हें हल्के में नहीं लेना चाहिए। डिहाइड्रेशन से बचाव के लिए सबसे महत्वपूर्ण है कि नियमित रूप से पानी पिएं। केवल प्यास लगने का इंतजार ना करें, दिन भर थोड़ी थोड़ी मात्रा में पानी पीते रहना चाहिए। नारियल पानी है, छाछ है, नींबू पानी है, बेल का शरबत है और ताजे फलों का रस भी आप पी सकते हैं, जो शरीर को

का शरबत है और ताजे फलों का रस भी आप पी सकते हैं जो शरीर को तरोताजा रखता है। तरबूज, खरबूजा, खीरा, ककड़ी जैसे जो मौसमी फल और सब्जियां होती हैं वो भी शरीर में पानी की मात्रा को बनाए रखते हैं। गर्मियों में दोपहर के समय अनावश्यक रूप से बाहर न निकलें, उससे बचना चाहिए। हल्के रंग के सूती कपड़े पहने, सिर पर टोपी या छाते से ढककर ही बाहर निकलें और अपने साथ बाहर जाते समय पानी की बोतल अवश्य रखें। घर के भीतर भी कमरे को हवादार बनाए रखें और अत्यधिक गर्म वातावरण से बचें। परिवार के सदस्य समय समय पर बुजुर्गों के लिए पानी की याद उन्हें दिला सकते हैं, उन्हें पानी पिला सकते हैं और उनकी दिनचर्या पर भी ध्यान रख सकते हैं। स्वस्थ जीवन का आधार केवल दवाइयां नहीं होती श्रोताओं, वो हैं सही आदतें जो आप अपने जीवन में अपनाते हैं। गर्मियों में पर्याप्त पानी पीना, संतुलित आहार लेना और शरीर के संकेतों को समझना डिहाइड्रेशन से बचाव का सबसे सरल और प्रभावी उपाय है। तो स्वस्थ रहें श्रोताओं, सतर्क रहें और अपने जीवन में हर मौसम का आनंद लेते रहें।

काला पानी फिल्म में अभी आप आशा भोसले को सुन रहे थे। श्रोताओं, सुबह की पहली किरण के साथ ही एक प्याली गर्मा गर्म चाय दिन बना देती है। हमारे देश में चाय केवल एक पेय नहीं बल्कि जीवन शैली का हिस्सा है। किसी मेहमान के स्वागत से दोस्तों की महफिल तक, परिवार की बातचीत से लेकर दफ्तर की छोटी सी ब्रेक तक, हर जगह चाय ही तो मौजूद है। चाय को अक्सर लोग दिलों को जोड़ने वाला पेय कहते हैं। एक कप चाय के साथ शुरू होती है बातचीत, कई रिश्तों को गहरा बना देती है और अनजान लोगों को भी अपना सा महसूस कराती है। भारत में चाय हमारी संस्कृति और सामाजिक जीवन का अभिन्न हिस्सा बन चुकी है। गांव की चौपाल हो या शहर में चाय की दुकान का ठेला, चाय के आसपास हमेशा संवाद, विचार और अपनापन ही देखने को मिलता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि चाय का वो खास स्वाद और मन को मोह लेने वाली खुशबू आखिर आती कहाँ से है? इसका राज कहाँ छिपा है? इसका राज है चाय मसाले में। बाजार में कई तरह के चाय मसाले उपलब्ध हैं, लेकिन घर पर भी चाय मसाला तैयार किया जा सकता है, जो न केवल शुद्ध होता है बल्कि उसकी सुगंध और स्वाद भी अलग ही आनंद देता है। घर पर चाय मसाला बनाना बहुत आसान है। इसके लिए आपको लगभग 20 ग्राम हरी इलायची, 10 ग्राम दालचीनी, 10 ग्राम लौंग, 10 ग्राम काली मिर्ची और 20 ग्राम सौंठ यानी सूखी अदरक जो होती है, और 5 ग्राम जायफल और एक छोटा चम्मच अगर आप सौंफ का ले लें, और आप चाहें तो उसमें गुलाब, सूखे गुलाब की पत्तियां भी मिला सकते हैं या खसखस का थोड़ा सा आप उसमें मिश्रण बना सकते हैं, वो भी चाय को बहुत अच्छा स्वाद देते हैं। इन सभी मसालों को पहले आप हल्की आंच पर 1-2 मिनट के लिए भून लें ताकि उनकी प्राकृतिक सुगंध और भी निखर कर आए। इसके बाद इन्हें पूरी तरह से ठंडा होने दें और फिर मिक्सर या सिलबट्टे की सहायता से पीस लें। तैयार मसाले को किसी साफ और सूखे कांच के जार में भर कर रख दें। जब भी चाय बनानी हो, एक कप चाय में केवल एक चुटकी मसाला डाल दें। देखते ही देखते आपकी साधारण चाय जो है ना, वो एक सुगंधित और स्वादिष्ट मसाला चाय में बदल जाएगी। इलायची स्वाद बढ़ाती है, दालचीनी, लौंग और काली मिर्च शरीर को गर्माहट देती है, जबकि सौंठ पाचन में सहायक होती है। तो अगली बार जब भी चाय की केतली चढ़े ना घर में, तो उसमें अपने हाथों से तैयार किया गया ये चाय मसाला जरूर मिलाइए। यकीन मानिए, इसकी खुशबू केवल चाय में ही नहीं बल्कि घर में माहौल में एक मिठास घोल देगी। तो आखिर चाय तो वही है ना, जो स्वाद के साथ साथ अपनापन भी परोसे।

0: के दौरान।
1: लता मंगेशकर और किशोर कुमार को अभी आप सौतन फिल्म में सुन रहे हैं। और श्रोताओं, अब कार्यक्रम का समय भी थोड़ा सा समाप्त हो रहा है, तो क्यों ना आज फिर से हम अपने वरिष्ठ जनों के लिए एक अपनापन और सम्मान बढ़ाएं और आपसे कहें कि आप fmgoldga@gmail.com पर हमें अपने अनुभव, अपने विचार जरूर भेजें। तो कार्यक्रम का समय संपन्न हो रहा है, मुझे यानी श्रुति पुरी को घर आंगन कार्यक्रम संपन्न करने की अनुमति दीजिए। नमस्कार।

आंगन। आपके अस्तित्व आपके व्यक्तित्व से जुड़ा आपका घर आंगन।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। भारतीय रिजर्व बैंक ने चालू वित्त वर्ष में लगातार दूसरी बार मौद्रिक नीति समीक्षा के दौरान प्रमुख ब्याज दरों को यथावत रखा है। द्विमासिक मौद्रिक नीति की घोषणा करते हुए बैंक के गवर्नर संजय मल्होत्रा ने कहा कि मौद्रिक नीति समिति ने सर्वसम्मति से रेपो दर को 5.25% पर बनाए रखने का निर्णय लिया है, जबकि नीतिगत तटस्थ रखा गया है।
1: हमने बदलती दीर्घ आर्थिक और वित्तीय परिस्थितियों तथा भविष्य के अनुमानों की विस्तार से समीक्षा की है। इसके बाद समिति ने सर्वसम्मति से LAF के अंतर्गत नीतिगत रेपो दर को 5.25% पर ही बनाए रखने का निर्णय लिया है।
0: बैंक ने चालू वित्त वर्ष के लिए सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि अनुमान को पहले के 6.9% से घटाकर 6.6% कर दिया है। उद्योग संगठन SOCHM ने RBI के रेपो दर को 5.25% पर बनाए रखने के निर्णय की सराहना करते हुए कहा है कि यह विकास को गति देगा और उद्योग जगत को मजबूती प्रदान करेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात के सूरत में सड़क, बिजली और औद्योगिक क्षेत्रों में 18,800 करोड़ रुपए से अधिक की कई विकास परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे। श्री मोदी पहले हजीरा में औद्योगिक और अवसंरचना परियोजनाओं की समीक्षा करेंगे। दोपहर में श्री मोदी का एक विशाल जनसभा को संबोधित करने का कार्यक्रम है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि प्रधानमंत्री आज शाम दमन भी जाएंगे।
2: क्षेत्रीय बुनियादी ढांचे को बड़ी गति देते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात और महाराष्ट्र के बीच कनेक्टिविटी को बढ़ाने के लिए वडोदरा मुंबई एक्सप्रेसवे के महत्वपूर्ण पैकेज राष्ट्र को समर्पित करेंगे। वे राष्ट्रीय राजमार्ग 56 के महत्वपूर्ण खंडों को 4 लेन बनाने की भी आधारशिला रखेंगे, जिससे आदिवासी क्षेत्रों और स्टैच्यू ऑफ यूनिटी तक पहुँच में सुधार होगा। जन कल्याण के तहत प्रधानमंत्री सूरत में 24 घंटे आपातकालीन और ट्रॉमा केयर सुविधाओं से लैस एक आधुनिक 200 बिस्तरों वाले ESIC अस्पताल का भी उद्घाटन करेंगे। अपर्णा खूंट, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत की डिजिटल बुनियादी ढांचा यात्रा गति पकड़ रही है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि एयर ट्रंक ने भारत में लगभग 3 लाख करोड़ रुपए का निवेश करने और 5 गीगावाट डेटा सेंटर क्षमता विकसित करने की योजना की घोषणा की है। उन्होंने कहा कि ये देश का डिजिटल बुनियादी ढांचा पारिस्थितिकी तंत्र में प्रस्तावित सबसे बड़े निवेशों में से एक है। गृह मंत्री अमित शाह त्रिपुरा के अगरतला में BSF के जवानों को संबोधित करते हुए कहा कि भारत की हर सीमा की भौगोलिक और सुरक्षात्मक चुनौतियां अलग अलग हैं, इसलिए सभी सीमाओं पर एक जैसी रणनीति के बजाय स्मार्ट मॉडल अपनाया जाएगा। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में पर्यावरण को लेकर कई कदम उठाए गए हैं। भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष नितिन नवीन ने तमिलनाडु के प्रदेश अध्यक्ष के अनामलाई के पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से दिए गए इस्तीफे को स्वीकार कर लिया है। अनामलाई ने हाल ही में भाजपा अध्यक्ष को इस्तीफा सौंपा था। कर्नाटक के जल संसाधन मंत्री रामलिंगा रेड्डी ने आज अपने मंत्रालय के आवंटन को लेकर मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है। बेंगलुरु में संवाददाताओं से बात करते हुए उन्होंने कहा कि उन्हें बेंगलुरु विकास मंत्रालय देने का वादा किया गया था, लेकिन उन्हें जल संसाधन मंत्रालय दिया गया। उन्होंने कहा कि वे विधायक के रूप में काम करते रहेंगे और कांग्रेस पार्टी में बने रहेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के बलिया स्थित जयप्रकाश नारायण पक्षी अभयारण्य सुरहा ताल को भारत का 100वां रामसर स्थल घोषित किए जाने पर प्रसन्नता व्यक्त की है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि देश के प्राकृतिक परिवेश और विशेष रूप से आर्द्र भूमि की रक्षा के प्रति भारत की

0: in Namo Oxygen Parks in New Delhi on the occasion of World Environment Day. Prime Minister Narendra Modi has expressed happiness that the Jai Prakash Narayan Bird Sanctuary Surhartal in Balia, Uttar Pradesh has been designated as India's 100th Ramsar site. The Prime Minister has said India's digital infrastructure journey is gathering remarkable momentum. In a social media post, Mr. Modi informed that AirTrunk has announced plans to invest around 3 lakh crore rupees in India and develop 5 gigawatt of data center capacity. Benchmark domestic equity indices slipped into negative territory during afternoon trade. Today, the Sensex lost 86 points to 74,274, while the Nifty dropped 43 points to 23,374 when reports last came in. And with that, we end this news bulletin.
1: आकाशवाणी दिल्ली का ये इंद्रप्रस्थ चैनल है. मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, टीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़ पर. वक्त हुआ है दिन का 1:10:16. ये वो वक्त है जिसमें हर रोज आपको इंतजार रहता है उस प्रोग्राम का जिसका नाम है एक ही फिल्म से. और आज इस प्रोग्राम को लेकर हाजिर हूँ मैं आपकी दोस्त एंड होस्ट अंजू पांडे. दोस्तों, हर रोज हम आपके लिए एक ना एक चुनकर सुपर डुपर हिट फिल्म लेकर आते हैं. हिंदी सिनेमा के इतिहास में कुछ फिल्में ऐसी हैं जिन्होंने ना सिर्फ बॉक्स ऑफिस पर सफलता हासिल की बल्कि पूरी पीढ़ी की सोच और फैशन को भी बदल दिया. ऐसी ही एक यादगार फिल्म है जिसे आज हम लेकर आए हैं. 1973 में रिलीज हुई ये फिल्म युवा प्रेम की नई परिभाषा लेकर आई और इसने दो नए सितारों को जन्म दिया. तो आज की ये सुपरहिट फिल्म कौन सी है, हमेशा की तरह आप अंदाजा तो लगा ही लेते हैं और फिर ये भी जानते हैं कि जब आप अंदाजा लगा लेते हैं तो करना क्या है आपको. जी हाँ, मेल आईडी बता देती हूँ. मेल आईडी है ipradiodelhi@gmail.com. इस पते पर अपनी बात पहुंचानी है तो देर किस बात की, सुनवाते हैं इसी फिल्म का ये सुपरहिट गीत.

0: लेकिन हम तो आपसे बोलेंगे और आपको बताएंगे कि आज हम आपके लिए कौन सी फिल्म चुनकर लेकर आए हैं। इस गीत को सुनने के बाद जो अभी हमने आपको सुनवाया, इसको सुनने के बाद अंदाजा तो आपने लगा ही लिया है और वो अंदाजा आपका बिल्कुल ठीक है। ये 1973 की एक सुपरहिट फिल्म थी जिसका निर्देशक किया था राज कपूर ने, निर्माता भी राज कपूर थे और फिल्म में नजर आए थे ऋषि कपूर और डिंपल कपाड़िया। इनके साथ में प्रेम भी थे और प्रेम नाथ भी थे। याद आ गई ना आपको, भला कैसे आप इस सुपरहिट फिल्म को भूल सकते हैं। तो आज इसी फिल्म के बारे में हम आपको कुछ बातें बताएंगे और साथ ही साथ इस फिल्म के गीत भी सुनवाएंगे।
1: मुझे कुछ कहना है,
2: मुझे भी कुछ कहना है,
1: मुझे कुछ कहना है,
2: मुझे भी कुछ कहना है।
1: पहले तुम,
2: पहले तुम,
1: पहले तुम,
2: पहले तुम,
1: पहले तुम,
2: तुम,
1: तुम,
2: तुम,
1: तुम,
2: तुम,
1: तुम,
2: तुम। देखो जिस तरह लखनऊ के दो नवाबों की गाड़ी पहले आप, पहले आप, पहले आप, पहले आप करके निकल गई थी, उस तरह हमारी पहले तुम, पहले तुम, पहले तुम, पहले तुम में ये मस्ती भरे रुत न चली जाए।
1: अच्छा मैं कहती हूँ,

0: कहना मुश्किल हो, लेकिन कोशिश करते रहना चाहिए और हम भी कोशिश करेंगे। आज जो फिल्म हम लेकर आए हैं 1973 में बनी एक संगीतमय प्रेम फिल्म। हमने आपको बताया कि निर्माण और निर्देशन दोनों राज कपूर साहब ने किया था। फिल्म की जो कहानी लिखी थी वो थी ख्वाजा अहमद अब्बास। इस फिल्म में राज कपूर के बेटे ऋषि कपूर ने अपनी पहली मुख्य भूमिका निभाई थी और साथ में नजर आई थी खूबसूरत सी डिंपल कपाड़िया। ये भी उनकी पहली ही फिल्म थी। ये फिल्म ब्लॉकबस्टर साबित हुई थी और 1973 की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली भारतीय फिल्म बनी थी। जी हाँ, 1970 के दशक की दूसरी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली ये फिल्म थी और इस फिल्म ने भारत के साथ साथ सोवियत संघ, जी हाँ उस टाइम नाम सोवियत संघ था उस रशिया का, तब भी इसने एक वहां पर भी ये ब्लॉकबस्टर फिल्म साबित हुई थी। इस फिल्म में दो चेहरे नजर आए थे जिन्होंने रातों रात लोगों के दिलों में अपनी जगह बना ली थी। ऋषि कपूर जो कि राज यानी कि राजा नाथ के रूप में नजर आए थे, डिंपल कपाड़िया बॉबी बनी थी, इन्हीं के नाम पे ये फिल्म थी। प्रेमनाथ जैक ब्रिंगाजा के रूप में थे, प्राण रामनाथ के रूप में नजर आए थे, वहीं प्रेम चोपड़ा ही बने थे। सोनिया साहनी सुभाष नाथ के किरदार में, सुषमा नाथ के किरदार में थी। दुर्गा कोटी, अरुणा ईरानी जिनके ऊपर एक बहुत ही खूबसूरत सुपरहिट गीत पिक्चराइज किया गया था। इनके अलावा पिंचू कपूर, जगदीश राज और भी बहुत सारे कलाकार थे, लेकिन एक बात थी, हर कलाकार ने अपनी एक अमिट छाप छोड़ी थी फिल्म बॉबी में।
1: ऐसे कोई अंदर ना आ सके, अंदर से कोई बाहर ना जा सके।

बॉबी फिल्म एक अमीर लड़के राजा और गरीब मछुआरे की बेटी बॉबी की प्रेम कहानी है। दोनों अलग अलग सामाजिक वर्गों से आते हैं, इसलिए उनके परिवार इस रिश्ते का विरोध करते हैं। तमाम मुश्किलों और विरोध के बावजूद दोनों अपने प्यार को बचाने के लिए संघर्ष करते हैं। ये कहानी भारतीय दर्शकों के लिए नई थी क्योंकि इसमें किशोर प्रेम को केंद्र में रखा गया था।

जाने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये फिल्म और इस फिल्म के सुपर डुपर हिट गीत हम आप तक पहुंचा रहे हैं। और हो भी क्यों ना वो सुपरहिट गीत, क्योंकि संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल साहब का था। उनकी जो जादुई संगीत थी वो इस फिल्म की सफलता में पूरा की पूरा योगदान देता है। इन गीतों ने फिल्म की लोकप्रियता को नई ऊंचाइयों पर पहुंचा दिया था। आपको बता दें कि राज कपूर की महत्वाकांक्षी फिल्म मेरा नाम जोकर बॉक्स ऑफिस पर असफल रही थी। इससे आर के स्टूडियो आर्थिक संकट में आ गया था। कम बजट में बनाई गई बॉबी फिल्म ने जबरदस्त सफलता हासिल करके स्टूडियो को फिर से खड़ा कर दिया था।

था और इस फिल्म को भी लोगों का इतना ज्यादा प्यार मिला कि शायद राज कपूर साहब ने भी नहीं सोचा था। कहा जाता है कि शुरुआत में राज कपूर किसी और नए चेहरे को लेना चाहते थे, लेकिन आखिर में उन्होंने अपने बेटे ऋषि कपूर को नायक बनाया। ये उनका पहला मुख्य नायक वाला रोल था, यानी कि ऋषि कपूर साहब का। जब फिल्म बनी तब डिम्पल कपाड़िया मात्र 16 वर्ष की थी। उनकी ताजगी और सहज अभिनय ने उन्हें रातों रात स्टार बना दिया था। बॉबी फिल्म की अपार सफलता के बाद डिम्पल कपाड़िया ने सुपरस्टार राजेश खन्ना साहब से विवाह कर लिया था और समय के लिए वो फिल्म से दूरी उनकी हो गई थी। इसीलिए दर्शकों को उनकी जो अगली फिल्म थी उसके लिए थोड़ा लंबा इंतजार करना पड़ा था। बॉबी फिल्म में जो फिल्म थी से फैशन भी आया था। जी हाँ, बॉबी में पोलका डॉट टॉप और बड़ी टोपी और युवा जो थे वो इस ट्रेंड को इतना ज्यादा फॉलो उन्होंने किया कि देश भर में जितने भी यंगर्स थे वो यही पहनावा पहने हुए नजर आने लगे थे।

आपको बता दें कि 1973 की ये सबसे बड़ी हिट फिल्म में शामिल थी। ऋषि कपूर साहब को सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार मिला था और फिल्म ने भारतीय सिनेमा में टीनेज रोमांस की लहर भी शुरू की थी। इस फिल्म का एक गीत हम तुम एक कमरे में बंद हो इसको लेकर सेंसर बोर्ड के कुछ सदस्यों ने पहले आपत्ति भी जताई थी। हालांकि गीत को हल्के फुल्के और शरारती अंदाज में फिल्माया गया था, इसीलिए इसे बाद में मंजूरी मिल गई थी। बाद में ये गीत इस फिल्म की पहचान भी बन गई। आपके ढेर सारे संदेश भी हम तक पहुंच रहे हैं, बस अब इंतजार आपका भी हम खत्म करते हैं और उनको हम शामिल करते हैं।

और आज थोड़ा सा आपसे मैं माफी मांगूंगी क्योंकि वक्त हमारे पास बहुत कम है और संदेश आपके बहुत ज्यादा हैं, तो कोशिश करूंगी कि जितने भी ज्यादा हो सके आपके संदेशों को मैं शामिल कर लूं। बिलाईगढ़ छत्तीसगढ़ से रोशनलाल देवांगन, कौशल हेमलता डिंपल जी हमारे साथ हैं, नितेश कुमार दुर्गा प्रसाद पराग ये पलारी छत्तीसगढ़ से जुड़े हुए हैं, नीतीश कुमार तनुजा ईशांत जी पहादा पलारी छत्तीसगढ़ से हैं, देव शंकर तामुरी अजय देव तुषार देव कवि रेडियो श्रोता संघ डोंडी लोहारा बालोद छत्तीसगढ़ से हैं, पिपरिया से कमलकांत गुप्ता दीपा रिमझिम, समरी नवापारा से मुकेश श्रद्धा अदिति और राधे गुप्ता हमारे साथ हैं, सुनील पाठक जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और गुरमीत सिंह साउथ एक्सटेंशन से हैं, शालीमार बाग से अशोक कुमार सहगल जुड़े हुए हैं, डीवी राणा नेहरू बार दिल्ली से हैं, अजीत भापसर जी प्रमीला भापसर के साथ जुड़े हुए हैं हमारे साथ वीरन गांव से, और ये संदेश हमारे पास पहुंचा है ये खेड़ा तिवानशी खेड़ा ये भूषण फालसिका पंजाब से खेड़ा परिवार सॉरी माफ कीजिएगा हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वटिंग खेड़ा से पंजाब से मिंटू टोमस पिंकी लवली आरती अरोरा हमारे साथ हैं, और अजीत भापसर जी का एक और संदेश हमारे पास पहुंचा है, हमेशा की तरह बेहतरीन जानकारी इन्होंने शेयर की है। अगला जो संदेश है नरवेश्वर नगर नरवेल महाराष्ट्र से पीएस नोहानकर निर्मला विशाल जी का आया है, गांव नथाना पंजाब से हरजिंदर छिंदा जी हैं, बबलेश पवार जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जग्गाराम साहू जी हमारे साथ हैं, भागवत वर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सुरेश यादव हैं, फागुन राम यादव हमारे साथ हैं, डीवी राणा जी का संदेश है, सचिन गिल का है, बबलेश पवार जी का एक और संदेश है, मोहम्मद सैद अब्बासी जी परिवार के साथ ऊपरकोट मौला चौखंडी बुलंदशहर से हैं, धर्मेंद्र छिपा कपिल पीछा छिपा जी भोपाल से हैं, सुदर्शन मुखी जी शांति नगर से हैं, और कुछ और संदेश हैं, पहाड़गंज मुल्तानी ढाणा सनी मोहन जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, चिरमिरी कुलासिया कालडी से इंद्रभान सिंह अपने दोस्तों परिवार के साथ हैं, पीटीआई संसद मार्ग से अनिल मोहन जी हैं हमारे साथ जुड़े हुए हैं, संजय डिंगिया जी नमन डिंगिया बागपत उत्तर प्रदेश से जुड़े हुए हैं हमारे साथ, संदीप मक्कर जी हमारे साथ हैं और बिट्टू गंगजेजा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप सभी का हम बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं आज के सफर में हम सफर बनने के लिए।

तो दोस्तों ये थी आज की सुपरहिट फिल्म बॉबी। उम्मीद करते हैं कि आज का सफर आपको जरूर पसंद आया होगा। अगले सफर में फिर एक नई फिल्म के साथ आपकी और हमारी मुलाकात होगी। तब तक अपनी दोस्त एंड होस्ट अंजू पांडे को अनुमति दीजिए। नमस्कार।

0: अभी आप सुन रहे थे प्रोग्राम एक ही फिल्म से, आकाशवाणी दिल्ली का ये इंद्रप्रस्थ चैनल है। 1:40 होने को है, कुछ ही देर में समाचार होंगे।
1: नमस्कार, ये आकाशवाणी है। खबरां दिस बुलेटिन नाल मैं चंचल शर्मा। पहला बुलेटिन दियां खास खबरां। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात के दमन के दौरे ते करीब 21,800 करोड़ तो वादी लागत वाले कई विकास प्रोजेक्टां दी करनगे शुरुआत। भारतीय रिजर्व बैंक ने चालू वित्तीय साल च मुख ब्याज दरां नूं बरकरार रख्या। रैपो दर नूं 5.25% ते बनाई रखण दा कीता फैसला। अज विश्व वातावरण दिवस मौके उपराष्ट्रपति ते प्रधानमंत्री वल्लों देशवासियां नूं वातावरण सुरक्षा, पायदार जीवन शैली ते जैव विभिन्नता दी संभाल प्रति अपनी वचनबद्धता नूं मजबूत करन दी अपील। मौसम विभाग ने अज पंजाब, हरियाणा ते चंडीगढ़ समेत होरना कई सूबियां च गरज चमक दे नाल हनेरी चलण बारे ओरेंज अलर्ट जारी कीता। मर्दां दे अंडर 18 एशियन कप हाकी टूर्नामेंट दे सैमीफाइनल च अज भारत दा मुकाबला पाकिस्तान नाल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अज गुजरात के दमन के दौरे ते ने। उस सूरत सड़क, बिजली ते उद्योगिक खेतरां च 18,800 करोड़ तो वादी लागत वाले कई विकास प्रोजेक्टां दा नींह पत्थर रखणगे। श्री मोदी पहला हजीरा जाणगे। प्रधानमंत्री दोपहर नूं इक जनतक मीटिंग नूं संबोधन करन तो पहला उद्योगिक ते बुनियादी ढांचे के प्रोजेक्टां की समीक्षा भी करनगे। श्री मोदी सूरत विच 200 बिस्तरां वाले ESIC हस्पताल का उद्घाटन भी करनगे जो आधुनिक सेहत संभाल सेवावां प्रदान करेगा। प्रधानमंत्री गुजरात सरकार दीआं कई प्रमुख पहलकदमियां दा भी उद्घाटन करनगे। शाम नूं प्रधानमंत्री मोदी दमन दा दौरा करनगे ते करीब 2,970 करोड़ रुपए दे विकास प्रोजेक्टां दा नींह पत्थर रखणगे। ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ, ਸਿਵਲ ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ, ਸੈਰ ਸਪਾਟਾ, ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ, ਸੰਪਰਕ ਤੇ ਜਨਤਕ ਭਲਾਈ ਸਮੇਤ ਵੱਖ ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਡਿਜੀਟਲ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਯਾਤਰਾ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਕ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪੋਸਟ ਵਿਚ ਸ੍ਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਏਅਰ ਟਰੰਕ ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਲਗਭਗ 3,00,000 ਕਰੋੜ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਤੇ 5 GW ਡੇਟਾ ਸੈਂਟਰ ਸਮਰੱਥਾ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤੈ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਡਿਜੀਟਲ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਇਕੋ ਸਿਸਟਮ ਵਿਚ ਤਜਵੀਜ਼ਸ਼ੁਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਨਿਵੇਸ਼ਾਂ ਚੋਂ ਇਕ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਲਾਊਡ ਕੰਪਿਊਟਿੰਗ ਅਤੇ AI ਲਈ ਇਕ ਆਲਮੀ ਕੇਂਦਰ ਵਜੋਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਗੇ, ਨਾਲ ਹੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਸਥਾਨਕ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨਗੇ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀ ਡਿਜੀਟਲ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਆਕਾਰ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਚਾਲੂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਵਿਚ ਲਗਾਤਾਰ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਆਪਣੀ ਮੁਦਰਾ ਨੀਤੀ ਸਮੀਖਿਆ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰਖਿਐ। ਦੁਮਾਹੀ ਮੁਦਰਾ ਨੀਤੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦਿਆਂ RBI ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਸੰਜੇ ਮਲਹੋਤਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਦਰਾ ਨੀਤੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸਰਵਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਰੈਪੋ ਦਰ ਨੂੰ 5.25% ਤੇ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤੈ।
2: हमने बदलती दीर्घ आर्थिक और वित्तीय परिस्थितियों तथा भविष्य के अनुमानों की विस्तार से समीक्षा की है। इसके बाद समिति ने सर्वसम्मति से LAF के अंतर्गत नीतिगत रेपो दर को 5.25% पर ही बनाए रखने का निर्णय लिया है।
1: फिक्स डिपॉजिट सहूलत दर 5% ते बनी हुई है, जबकि सीमांत स्थाई सहूलत अते बैंक दरां 5.5% ते बनिया हुई ने। RBI ने गैर निवासी भारतीयां, भारत दे विदेशी नागरिकां ते होर योग विदेशी निवेशकां लई इक्विटी बाजारां च निवेश दे मौकियां दा भी विस्तार कीता है। उद्योग संगठन SOCHAM ने RBI दे रैपो रेट नूं 2.25% ते बनाई रखण दे फैसले दी शलाघा कीती है। उन्हां कहा कि यह विकास नूं तेज अते उद्योग नूं मजबूत करेगा। SOCHAM दे सकत्तर जनरल सौरभ सानियाल ने कहा कि यह फैसला आर्थिक विकास नूं समर्थन देण च मदद करेगा ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਇਕ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੱਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰੱਖੇਗਾ। ਉਨਾਂ ਉਮੀਦ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਕਿ ਆਲਮੀ ਉਤਾਰ ਚੜਾਅ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਹ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਚ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਮਜ਼ਬੂਤ ਰਹੇਗਾ। ਇਹ ਖ਼ਬਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਤੋਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ। ਸਾਡਾ ਐਕਸ ਹੈਂਡਲ ਹੈ @AIRRNU ਜਲੰਧਰ।

फेसबुक पेज है RNU-AIR जलंधर और यूट्यूब ते साडा चैनल है @AIR जलंधर। अज विश्व वातावरण दिवस है। ए दिन 1973 तो संयुक्त राष्ट्र वातावरण प्रोग्राम तहत धरती ते जीवन बचाउण बारे जागरूकता पैदा करने लई हर साल 5 जून नूं मनाया जांदा है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों नूं वातावरण सुरक्षा पायदार जीवन शैली अते जैव विभिन्नता की संभाल प्रति अपनी वचनबद्धता नूं मजबूत करने की अपील की है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री राधाकृष्णन ने कहा कि भारत की सभ्यता ने अपने नागरिकों नूं कुदरत दे नाल इकसुरत विच रहना सिखाया। उपराष्ट्रपति ने हरेक नागरिक नूं आउण वालियां पीढ़ियां लई इक स्वच्छ सेहतमंद ते खुशहाल भविख बनाउण लई इकट्ठियां काम करन दा सद्दा दित्ता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि एक पेड़ मां के नाम वर्गियां पहलकदमियां ने हर साल लगभग 1,10,000 हेक्टेयर जंगलात रकबे नूं वधाउण च महत्वपूर्ण योगदान पाया। श्री मोदी ने अज विश्व वातावरण दिवस ते सारयां नूं शुभकामनावां दित्तियां अते वातावरण सुरक्षा लई समर्पित सारे लोकां दी शलाघा कीती। उन्होंने कहा कि सरकार ने पिछले दहाके दौरान इस दिशा च कई उपराले कीते ने। भारत ने भारत दियां कुछ वड्डियां प्राप्तियां ते चानना पाया जिन्हां विच हरियाली दा विस्थार कई जंगली जीवां दियां प्रजातियां दा वाधा करना शामिल है। उन्होंने कहा कि एक पेड़ मां के नाम वर्गियां पहलकदमियां ने प्रति साल लगभग 1,19,000 हेक्टेयर जंगलात रकबे नूं जोड़न च महत्वपूर्ण योगदान पाया। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश एक धरती एक परिवार ते एक भविख दे सिद्धांत तों प्रेरित मिशन लाइफ की भावना राही एक स्वच्छ ते हरे भरे ग्रह वल काम करना जारी रहेगा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ते खेतीबाड़ी ते किसान भलाई मंत्री शिवराज सिंह चौहान समेत होरना केंद्रीय मंत्रियों ने अज विश्व वातावरण दिवस दियां शुभकामनावां दित्तियां ने। वातावरण जंगलात ते जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने दिल्ली दी मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता दे नाल विश्व वातावरण दिवस मौके राजधानी च 18 नमो ऑक्सीजन पार्कां दा उद्घाटन कीता। इस मौके केंद्रीय मंत्री ने एक पेड़ मां के नाम मुहिम दे तहत कई वातावरण पहलकदमियां दी शुरुआत भी कीती। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दी अगुवाई हेठ भारत वातावरण सुरक्षा च इक आलमी नेता वजों उभरिया है। केंद्रीय मंत्री डॉ जितेंद्र सिंह अज जम्मू च एक नवे खेतरी मौसम विज्ञान केंद्र की स्थापना का रस्मी ऐलान कर रहे हैं। यह जम्मू कश्मीर लद्दाख ते हिमाचल प्रदेश च मौसम की पेशीनगोई ते आफत प्रबंधन की तैयारी मजबूत करने वाले एक महत्वपूर्ण कदम है। यह मौसम विज्ञान निरीक्षण अत्याधुनिक एक्स पैन डॉप्लर मौसम रडार प्रणालियां स्वैचालित मौसम स्टेशनों के एक नैटवर्क के नाल जुड़िया होगा। पंजाब राज महिला कमिश्नर ने लुधियाना च 9 कुड़ियां दे लापता होण दीआं रिपोर्टां दा अपने पद्धर ते नोटिस लै ते जांच दी वीरवे समेत रिपोर्ट मंगी है। चेयरपर्सन राष्ट्राली गिलती अगवाई वाले कमिश्नर ने एक हुक्म च लुधियाना पुलिस कमिश्नर नूं 8 जून तक रिपोर्ट पेश करने लई आख्या। पिछले महीने लुधियाना च कुछ दिनां दे अंदर नाबालगां ते किशोरां समेत 9 कुड़ियां दे लापता होण दे गंभीर चिंतावां पैदा कर दित्तियां ने अते समाज विच असुरक्षा दा माहौल पैदा कीता है। पंजाब पुलिस वालों विदेशी दहशतगर्दी समूह के 2 साथियों को गिरफ्तार करन ते उन्हां दे कब्जे विचों लगभग 2.5 किलो वजन के पूरी तरह तैयार किए RDX आधारित IED बरामद करन तो एक दिन बाद अज 4 होर मुलजमान 5 पिस्तौलां 1 किलो तो वध हैरोइन ते 5,00,000 रुपए की ड्रग मनी नाल गिरफ्तार किया गया। पुलिस सूत्रां ने दस्सिया कि इन्हां 4 मुलजमान चों एक अफगानिस्तान का नागरिक है। उन्हां दे नाल 2 नाबालिगां नूं भी गिरफ्तार किया गया। दोवें मामले मोहाली ते सरहदी जिले अमृतसर नाल संबंधित ने। इस दौरान कल मोहाली तों अमृतसर ते 3 नौजवानों तों बरामद किए गए RDX नाल भरे IED नूं स्टेट बम डिस्पोजल स्क्वैड वालों बेअसर ते नष्ट कर दिता गया। दोवां मामलों च अगलेरी जांच की जा रही है। केंद्रीय सैकेंडरी सिक्ख्या बोर्ड CBSE की 12वीं जमात के नतीजों के ऐलान तो बाद शिकायतों के हल वास्ते 70,000 तो वध अर्जियां प्राप्त हुई ने। इन्हां विच अंकों की तस्दीक लई 7,314 अर्जियां ते पुनर्मुलांकन वास्ते 63,000 तो वध अर्जियां शामिल ने। बोर्ड ने मंगलवार को स्कैन कीतियां उत्तर पत्रियां च कमियां की तस्दीक ते उत्तरां दे पुनर्मुलांकन लई ऑनलाइन पोर्टल खोलिया सी। 13 मई नूं 12वीं जमात के नतीजे ऐलानन तो कुछ देर बाद कुछ विद्यार्थियों ने दिते गए अंकों नाल असंतुष्टि प्रगट की ते ऑन स्क्रीन मार्किंग प्रणाली के तहत मुलांकन ते सवाल उठाए। इस तो बाद सिक्ख्या मंत्रालय ने सिस्टम दे लागूकरण अते खरीद पहलुआं दी समीक्षा शुरू की थी। मौसम विभाग ने अज पंजाब हरियाणा चंडीगढ़ जम्मू कश्मीर लद्दाख दिल्ली मध्य प्रदेश राजस्थान ते उत्तर प्रदेश च गरज चमक के नाल हनेरी चलन बारे ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। मर्दां दे अंडर 18 एशिया कप हाकी टूर्नामेंट के सैमीफाइनल विच अज भारत दा मुकाबला पाकिस्तान नाल होवेगा। यह मैच जापान के काका मेघारा हॉकी स्टेडियम च अज भारतीय समय मुताबिक दोपहर 3:30 बजे शुरू होगा। ते आखिर च खास खबरां एक बार फिर तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अज गुजरात अते दमन के दौरे ते करीब 21,800 करोड़ तो वध दी लागत वाले कई विकास प्रोजेक्टां

0: लगाम लगाने का काम करेंगे और पर्यावरण की और देश की सेवा करेंगे।
1: मरकज ने सरमाए पर हासिल होने वाले मुनाफे पर गैर मुल्की अदारा जाति सरमायाकारों और सरकारी तमस्सुकात में सरमायाकारी से होने वाली आमदनी में सूद पर टैक्स में छूट दी है। हुकूमत ने इस सिलसिले में इनकम टैक्स तरमीमी ऑर्डिनेंस 2026 को नाफिज कर दिया है। ये छूट इस साल 1 अप्रैल से काबिल इतलाक होगी। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने मौजूदा माली साल में लगातार दूसरी बार शरह सूद में कोई तब्दीली नहीं की है। रिजर्व बैंक के गवर्नर संजय मल्होत्रा ने आज मौजूदा माली साल के लिए दूसरी दोमाही माली पॉलिसी का ऐलान करते हुए कहा कि माली पॉलिसी कमेटी ने कम मुद्दत के कर्जे देने की शरह रेपो रेट को 5.25% की सतह पर बरकरार रखने का फैसला किया है। रिजर्व बैंक ने मौजूदा माली साल में मजमूई अंदरून मुल्क पैदावार GDP की शरह तरक्की कम होकर 6.6% रहने का अंदाजा लगाया है, जबकि इससे पहले उसके 6.9% रहने की बात कही गई थी। रिजर्व बैंक के गवर्नर ने मौजूदा माली साल के दौरान अशियाए सार्फीन की कीमतों के अशारिये पर मबनी अफरात जर की शरह का निशाना अब 5.1% कर दिया है, जबकि इससे पहले 4.6% रहने की बात कही गई थी। गवर्नर ने तरक्की में सुस्त रफ्तारी के अंदेशों के तौर पर आलमी सप्लाई चेन में देरी न रुकावटों, बैनुल अक्वामी माली मार्केट्स में गैर यकीनी सूरत हाल और मौसम से मुतालिक गैर यकीनी का जिक्र किया है। RBI ने शेयर बाजारों में गैर रिहायशी भारतीयों, भारत के बैरून मुल्क आबाद शहरियों और बैरून मुल्क दीगर अहम सरमायाकारों के लिए सरमायाकारी के मौकों में भी इजाफा किया है। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। सदन नितिन नबीन ने तमिलनाडु में BJP के चीफ के अन्नामलाई की तरफ से दिए गए पार्टी की इब्तदाई रुकनियत से इस्तीफा कबूल कर लिया है। हाल ही में अन्नामलाई ने BJP के सदर को अपना इस्तीफा पेश किया था। 12वीं जमात के तलबा की तरफ से CBSE के नतायज के बाद की शिकायतों के अजाले के अमल के लिए 70,000 से ज्यादा दरखास्तें मौसूल हुई हैं। इनमें 3,314 दरखास्तें, नंबरों की तौसीक और दोबारा जांच के लिए 63,000 से ज्यादा दरखास्तें शामिल हैं। नेपाल के वजीर खारजा शिशिर खनाल आज से भारत के 3 रोजा दौरे पर रहेंगे। वो वजीर खारजा डॉ एस जयशंकर की दावत पर भारत का दौरा कर रहे हैं। अपने दौरे के दौरान नेपाली वजीर खारजा नई दिल्ली में डॉ जयशंकर से मुलाकात करेंगे। नेपाल की वजारत खारजा ने एक बयान में कहा है कि तरफैन तिजारत, सरमायाकारी, कनेक्टिविटी, तवानाई और आवाम से आवाम के राब्तों समेत अहम शोबों में इश्तराक पर तबादले ख्याल करेंगे। आज दुनिया भर में माहौलियात का आलमी दिन मनाया जा रहा है। कुर्रयात पर जिंदगी बचाने के लिए बेदारी पैदा करने की खातिर माहौलियात से मुतालिक अक्वामे मुत्तहिदा प्रोग्राम के हिस्से के तौर पर 1973 से हर साल 5 जून को यह दिन मनाया जाता है। माहौलियात, जंगलात और आबोहवा में तब्दीली के मरकजी वजीर भूपेंद्र यादव ने दिल्ली के वजीर आला रेखा गुप्ता के हमराह आज माहौलियात के आलमी दिन के मौके पर नई दिल्ली में 18 नमो ऑक्सीजन पार्क्स का इफ्तिताह किया। जापान में 18 साल की उम्र तक के मर्दों के एशिया कप हॉकी टूर्नामेंट में आज शाम भारत का सेमीफाइनल में मुकाबला रवायती हरीफ पाकिस्तान से होगा। ये मैच काका मीगा हारा हॉकी स्टेडियम में भारतीय वक्त के मुताबिक 3:30 बजे शुरू होगा। आखिर में खास खबरों की सुर्खियां एक बार फिर। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज गुजरात में 18,800 करोड़ रूपये से ज्यादा की लागत वाले बहुत से तरक्याती प्रोजेक्टों को मुल्क के नाम वक्त करेंगे और संग बुनियाद रखेंगे। मरकज ने सरकारी तमस्सुकात में एहसासों के फायदों पर गैर मुल्की अदारा जाति सरमायाकारों को टैक्स में छूट दी है। RBI ने रेपो रेट में कोई तब्दीली न करते हुए इसे 5.25% पर बरकरार रखा है। उसने GDP से मुतालिक अपनी पेशगोई में शरह तरक्की को कम बताया है। इस माली साल के दौरान पहले यह पेशगोई 6.9% पर थी, अलबत्ता इसे कम करके अब 6.6% कर दिया गया है। नेपाल के वजीर खारजा शिशिर खनाल आज भारत के 3 रोजा दौरे पर नई दिल्ली पहुंचेंगे। आज माहौलियात का आलमी दिन मनाया जा रहा है। हुकूमत ने नई दिल्ली में 18 नमो ऑक्सीजन पार्कों का इफ्तिताह किया और जापान में मर्दों के 18 साल तक की उम्र के एशिया कप हॉकी के सेमीफाइनल में आज शाम भारत का मुकाबला उसके देरीना हरीफ पाकिस्तान से होगा। इसी के साथ खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।
2: गुड आफ्टरनून, दिस इज आकाशवाणी एंड आई एम वल्सा विलियम्स विद द मिडडे न्यूज। Headlines.

0: 18,800 करोड़ रुपए से अधिक की कई विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे। सरकार ने विदेशी संस्थागत निवेशकों को सरकारी प्रतिभूतियों के पूंजीगत लाभ पर कर छूट प्रदान की। रिजर्व बैंक ने रेपो दर में कोई बदलाव न करते हुए उसे 5.25% पर यथावत रखा। चालू वित्त वर्ष के लिए सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि का अनुमान 6.9% से घटाकर 6.6% किया। नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल आज से 3 दिन की भारत यात्रा पर। विश्व पर्यावरण दिवस आज मनाया जा रहा है। सरकार ने नई दिल्ली में 18 नमो ऑक्सीजन पार्कों का उद्घाटन किया। और जापान में पुरुषों के अंडर 18 हॉकी एशिया कप के सेमीफाइनल में आज शाम भारत का मुकाबला पाकिस्तान से। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सूरत में सड़क, बिजली और औद्योगिक क्षेत्रों के 18,800 करोड़ रुपए से अधिक की कई विकास परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे। श्री मोदी पहले हजीरा जाएंगे। प्रधानमंत्री दोपहर में एक जनसभा को संबोधित करने से पहले औद्योगिक और बुनियादी ढांचा कार्यों की समीक्षा करेंगे। प्रधानमंत्री शाम को दमन का दौरा करेंगे। हमारी संवाददाता ने बताया कि श्री मोदी वहां लगभग 2,970 करोड़ रुपए की विभिन्न परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दमन में नमो हवाई अड्डे के नए टर्मिनल भवन और आधुनिक नमो अस्पताल का उद्घाटन करेंगे, जिससे केंद्र शासित प्रदेश में क्षेत्रीय हवाई संपर्क और स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूती मिलेगी। प्रधानमंत्री आज दमन कन्वेंशन सेंटर, निफ्ट परिसर और एक प्रतिष्ठित ब्रिज समेत कई ऐतिहासिक बुनियादी ढांचा परियोजनाओं की भी आधारशिला रखेंगे। समुद्री विकास की दिशा में एक बड़े कदम के रूप में प्रधानमंत्री आज केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप के लिए भी 885 करोड़ रुपए की बंदरगाह परियोजनाओं का शिलान्यास करेंगे। इन परियोजनाओं के तहत कल्पेनी और कदमत द्वीपों पर बहुउद्देश्यीय जेटियों का विकास किया जाएगा, जिससे स्थानीय मछुआरों को एकीकृत मछली पकड़ने और नाव मरम्मत सुविधाएं मिलने के साथ साथ बड़े यात्री और क्रूज जहाजों के लिए साल भर रुकने की व्यवस्था उपलब्ध होगी। अपर्णा खून, आकाशवाणी समाचार, सूरत।
0: सरकार ने विदेशी संस्थागत निवेशकों को सरकारी प्रतिभूतियों से होने वाले पूंजीगत लाभ और ब्याज से आय को पूरी तरह से कर छूट दे दी है। ये छूट इस वर्ष 1 अप्रैल से लागू होगी। सरकार ने इस संबंध में आयकर संशोधन अध्यादेश 2026 जारी किया है। वित्त मंत्रालय ने कहा कि इस कदम से सरकारी प्रतिभूतियों पर कराधान कई देशों के समान हो जाएगा। मंत्रालय ने बताया कि इसी तरह के आयकर छूट बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट्स को भी दी गई है। रिजर्व बैंक ने चालू वित्त वर्ष में लगातार दूसरी बार मौद्रिक नीति समीक्षा के दौरान प्रमुख ब्याज दरों को यथावत रखा है। द्विमासिक मौद्रिक नीति की घोषणा करते हुए बैंक के गवर्नर संजय मल्होत्रा ने कहा कि मौद्रिक नीति समिति ने सर्वसम्मति से रेपो दर को 5.25% पर बनाए रखने का निर्णय लिया है, जबकि नीतिगत तटस्थ रखा गया है।
2: हमने बदलती दीर्घ आर्थिक और वित्तीय परिस्थितियों तथा भविष्य के अनुमानों की विस्तार से समीक्षा की है। इसके बाद समिति ने सर्वसम्मति से LAF के अंतर्गत नीतिगत रेपो दर को 5.25% पर ही बनाए रखने का निर्णय लिया है।
0: स्थायी जमा सुविधा की दर 5% पर बनी हुई है, जबकि सीमांत स्थायी सुविधा और बैंक दर 5.5% पर ही है। बैंक ने चालू वित्त वर्ष के लिए सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि अनुमान को पहले के 6.9% से घटाकर 6.6% कर दिया है। बैंक ने मुद्रास्फीति के अपने पूर्वानुमान को भी 4.6% से बढ़ाकर 5.1% कर दिया है। रिजर्व बैंक के गवर्नर संजय मल्होत्रा ने कहा कि पॉलीमर आधारित करेंसी नोट का प्रस्ताव बैंक के विचाराधीन है। देश के विभिन्न हिस्सों में बैंक शाखाओं और ATM में नोटों की कमी को लेकर कुछ ग्राहकों ने शिकायतें की हैं। इन मुद्दों पर उन्होंने कहा कि बैंक के पास पर्याप्त नकदी है और यदि कोई कमी है तो उसे तुरंत पूरा कर दिया जाएगा। उद्योग संगठन एसोचैम ने RBI के रेपो दर को 5.25% पर बनाए रखने के निर्णय की सराहना करते हुए कहा है कि यह विकास को गति देगा और उद्योग जगत को मजबूती प्रदान करेगा। एसोचैम के महासचिव सौरभ सान्याल ने कहा कि यह निर्णय आर्थिक प्रगति के साथ साथ मुद्रास्फीति को एक सुरक्षित दायरे में बनाए रखने में मददगार होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत की डिजिटल बुनियादी ढांचा यात्रा गति पकड़ रही है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि एयरट्रंक ने भारत में लगभग 3,00,000 करोड़ रुपए का निवेश करने और 5 GW डेटा सेंटर क्षमता विकसित करने की योजना की घोषणा की है। उन्होंने कहा कि यह देश का डिजिटल बुनियादी ढांचा पारिस्थितिकी तंत्र में प्रस्तावित

0: सबसे बड़े निवेशों में से एक है। नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल आज से 3 दिन के भारत यात्रा पर रहेंगे। श्री खनाल विदेश मंत्री एस जयशंकर के निमंत्रण पर भारत आ रहे हैं। इस यात्रा के दौरान श्री खनाल नई दिल्ली में डॉक्टर जयशंकर से मुलाकात करेंगे। नेपाल के विदेश मंत्रालय ने बताया कि दोनों देश व्यापार, निवेश, संपर्क, ऊर्जा और जनसंबंधों सहित प्रमुख क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने के उद्देश्य से पारस्परिक हित के मुद्दों पर चर्चा करेंगे। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। विश्व पर्यावरण दिवस आज मनाया जा रहा है। पृथ्वी पर सभी जीवों के जीवन की उपयोगिता बनाए रखने और संरक्षण के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के अंतर्गत ये दिवस मनाया जाता है। एक रिपोर्ट।
1: विश्व पर्यावरण दिवस का उद्देश्य प्रकृति और पृथ्वी की रक्षा के लिए लोगों को जागरूक करना और सकारात्मक कदम उठाने के लिए प्रेरित करना है। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव और राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह राष्ट्रीय राजधानी में मैदानगढ़ी स्थित नमो ऑक्सीजन पार्क में एक पेड़ माँ के नाम अभियान के तहत वृक्षारोपण कार्यक्रम में भाग लेंगे। इसके अलावा कई केंद्रीय मंत्री अपने अपने राज्यों में विश्व पर्यावरण दिवस से जुड़े कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। यह दिवस पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूकता बढ़ाने, लोगों को कार्यवाही के लिए प्रेरित करने और सतत विकास को बढ़ावा देने का अवसर है। अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और कई केंद्रीय मंत्रियों ने विश्व पर्यावरण दिवस की शुभकामनाएं दी हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में उपराष्ट्रपति ने कहा कि भारत की सभ्यता ने अपने नागरिकों को प्रकृति के साथ सामंजस्य बनाकर रहना सिखाया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि एक पेड़ माँ के नाम जैसी पहलों ने प्रतिवर्ष लगभग 1.1 लाख हेक्टेयर वन क्षेत्र बढ़ाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि ये दिन पर्यावरण संरक्षण और सतत विकास को बढ़ावा देने की प्रतिबद्धता को व्यक्त करने का प्रतीक है। गृहमंत्री अमित शाह ने आज त्रिपुरा के लंकामुरा सीमा चौकी पर सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ के जवानों को संबोधित करते हुए सीमा सुरक्षा को लेकर एक व्यापक दृष्टिकोण प्रस्तुत किया। विश्व पर्यावरण दिवस पर श्री शाह ने केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों सीएपीएफ के पर्यावरणीय योगदान को लेकर कहा कि वर्ष 2019 से सीएपीएफ कर्मियों द्वारा लगभग 6 करोड़ 40 लाख पौधे लगाए गए हैं।
2: 2019 से लेकर आज तक हमारे सभी सीएपीएफ में जवानों ने लगभग 6 करोड़ 40 लाख वृक्षों को लगाने का काम किया। इस साल हम 40 लाख से 60 लाख वृक्ष लगाने वाले हैं और अगले साल हम सबका एक सामूहिक संकल्प बनने वाला है कि अगले साल एक ही वर्ष में सीएपीएफ के जवान 2 करोड़ से ज्यादा वृक्षों का लगाने का काम करेंगे और पर्यावरण की और देश की सेवा करेंगे।
0: सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री डॉक्टर एल मुरुगन ने आज नई दिल्ली स्थित आकाशवाणी परिसर में एक पेड़ माँ के नाम अभियान के अंतर्गत पौधा लगाया। आकाशवाणी से बात करते हुए डॉक्टर मुरुगन ने नागरिकों से पर्यावरण संरक्षण का संकल्प लेने की अपील की। उन्होंने जल संरक्षण, वृक्षारोपण और वृक्षों की रक्षा तथा संरक्षण की आवश्यकता पर बल दिया।
3: माँ का नाम से एक पेड़ लगाने के लिए हमारा प्रधानमंत्री जी ऑलवेज एक्सप्रेस एंड ही कॉल्ड टू द नेशन वर्ल्ड एनवायरमेंटल डे, सो वी आर ऑल ऑब्जर्विंग दिस डे। यस, एंड माँ का नाम से एक पेड़ लगाएंगे।
0: पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के साथ विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर राजधानी में 18 नमो ऑक्सीजन पार्क का उद्घाटन किया। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री ने एक पेड़ माँ के नाम अभियान के अंतर्गत कई पर्यावरणीय पहलों का शुभारंभ किया। श्री यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में वैश्विक स्तर पर अग्रणी देश बनकर उभरा है।
4: भारत दुनिया में जो विश्व पर्यावरणीय संकट है उसमें एनर्जी के क्षेत्र में, वैकल्पिक ऊर्जा के क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है। जैसा अभी एरेना की रिपोर्ट में भी आया है कि सोलर ऊर्जा में हम दूसरे नंबर पे आए हैं, देश में वन क्षेत्र बढ़ रहे हैं और दिल्ली में आज माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में धूलमुक्त दिल्ली के लिए कार्यक्रम शुरू हो रहा है। दिल्ली में जो लोकल वनस्पतियां और जो पेड़ हैं उसके लिए प्रदर्शनी लगाई गई है, सभी एक पेड़ माँ के नाम पे जरूर लगाएं।
0: इस अवसर पर मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि दिल्ली की वायु गुणवत्ता में सुधार के लिए हरियाली बढ़ाना सबसे महत्वपूर्ण उपायों में से एक है। वस्त्र मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि हब एंड स्पोक मॉडल का उपयोग करते हुए हस्तशिल्प निर्यात संवर्धन परिषद नेटवर्क के माध्यम से लगभग 100 कारीगरों को अमेरिका के बाजारों से जोड़ा जा चुका है। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर आज नई दिल्ली में श्री सिंह ने कहा कि ये पहल स्थानीय स्तर पर निर्मित हस्तशिल्प को बढ़ावा देती है और वोकल फॉर लोकल के दृष्टिकोण को मजबूत करती है।
5: जो बसंत कुंज में अवस्थित ये मार्केट है, सरकार ने मुझे ये जमीन दी है आर्टिजन के बढ़ावा के लिए, तो हम इसमें आर्टिजन को अभी स्टॉल लगा रहे हैं, लोकल फॉर वोकल है, दूसरा एकदम पर्यावरण अनुकूल।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्व पर्यावरण दिवस पर पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव का एक लेख साझा किया है। अपने लेख में श्री यादव ने पर्यावरण संबंधी चुनौतियों से निपटने के लिए सामूहिक कार्रवाई और जन भागीदारी का आह्वान किया। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि भूपेंद्र यादव ने प्रकृति आधारित समाधानों के माध्यम से इन चुनौतियों से निपटने का अनुरोध किया है, जो टिकाऊ, किफायती और दीर्घकालिक पारिस्थितिकी लाभ प्रदान करने में सक्षम है। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर कई मंत्रियों ने एक पेड़ माँ के नाम के अंतर्गत पौधारोपण किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के बलिया स्थित जयप्रकाश नारायण पक्षी अभयारण्य सुरहा ताल को भारत का 100वां रामसर स्थल घोषित किए जाने पर प्रसन्नता व्यक्त की है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि देश के प्राकृतिक परिवेश और विशेष रूप से आर्द्र भूमि की रक्षा के प्रति भारत की अटूट प्रतिबद्धता इसमें झलकती है। भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष नितिन नवीन ने तमिलनाडु के प्रदेश अध्यक्ष के अन्नामलाई के पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से दिए गए इस्तीफे को स्वीकार कर लिया है। अन्नामलाई ने हाल ही में भाजपा अध्यक्ष को इस्तीफा सौंपा था। कर्नाटक के जल संसाधन मंत्री रामलिंगा रेड्डी ने आज अपने मंत्रालय के आवंटन को लेकर मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है। बेंगलुरु में संवाददाताओं से बात करते हुए उन्होंने कहा कि वे विधायक के रूप में काम करते रहेंगे और कांग्रेस पार्टी में बने रहेंगे। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अमेरिका और ईरान के बीच वार्ता जारी है। उन्होंने कहा कि किसी भी समझौते में स्थायी रूप से ईरान को परमाणु हथियार हासिल करने से रोका जाना चाहिए। व्हाइट हाउस में ट्रंप ने कहा कि परमाणु अप्रसार उनकी सरकार के दृष्टिकोण का मुख्य उद्देश्य बना हुआ है। एक रिपोर्ट।
6: राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि भविष्य में किसी भी समझौते के अंतर्गत ईरान को परमाणु हथियार हासिल करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। उन्होंने वर्ष 2015 के परमाणु समझौते की आलोचना करते हुए इसे ईरान के परमाणु हथियार हासिल करने का मार्ग बताया और यह दावा किया कि कोई भी नया समझौता मौलिक रूप से अलग होगा। ईरान के परमाणु ठिकानों पर किए गए अमरीकी हमलों का बचाव करते हुए उन्होंने कहा कि ये ठिकाने पूरी तरह नष्ट कर दिए गए थे और उन पर कड़ी निगरानी की जा रही थी। राष्ट्रपति ट्रंप ने चेतावनी दी कि अगर अमरीकी सैनिकों को निशाना बनाया गया तो तुरंत जवाबी कार्रवाई की जाएगी। अमरीका के राष्ट्रपति की ये टिप्पणियां ईरान के परमाणु कार्यक्रम और क्षेत्रीय सुरक्षा मुद्दों पर दीर्घकालिक समझौते तक पहुंचने के लिए जारी राजनयिक प्रयासों के बीच आई। समाचार कक्ष से जया भारती।
0: घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक के दोपहर के कारोबार में आज लगभग 0.4% की गिरावट दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलते तक सेंसेक्स 289 अंक फिसलकर 74,071 पर, जबकि निफ्टी 100 अंक लुढ़ककर 23,317 पर था। पुरुष अंडर 18 एशिया कप हॉकी टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में आज भारत का सामना पाकिस्तान से होगा। मैच जापान के काकामिगाहारा हॉकी स्टेडियम में भारतीय समयानुसार शाम 3:30 से खेला जाएगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात में 18,800 करोड़ रुपए से अधिक की कई विकास परियोजनाओं का शिलान्यास लोकार्पण करेंगे। सरकार ने विदेशी संस्थागत निवेशकों को सरकारी प्रतिभूतियों के पूंजीगत लाभ पर कर छूट प्रदान की। रिजर्व बैंक ने रेपो दर में कोई बदलाव न करते हुए उसे 5.2% पर यथावत रखा। चालू वित्त वर्ष के लिए सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि का अनुमान 6.9% से घटाकर 6.6% किया। नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल आज से 3 दिन की भारत यात्रा पर और विश्व पर्यावरण दिवस आज मनाया जा रहा है। सरकार ने नई दिल्ली में 18 नमो ऑक्सीजन पार्क का उद्घाटन किया। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
7: मीडियम वेव 1584 किलोहर्ट्ज़, 684 किलोहर्ट्ज़ FM 100.1 MHz और न्यूज़ ऑन AIR मोबाइल ऐप पर ये आकाशवाणी करगिल है। سامعین پیش خدمت ہے این سی آر ٹی کا سپانسر پروگرام امنگ۔

0: उमंग CIET प्रस्तुत करता है
1: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: सभी श्रोताओं को विमलेश का नमस्कार
3: और अजीत का भी नमस्कार। वसीम अकरम और गुड़िया खातून जी ने सुविचार भेजा है, लिखते हैं,
2: सफलता प्राप्त करने का एकमात्र तरीका है कठोर परिश्रम और लगन।
3: बहुत बहुत धन्यवाद इस प्यारे संदेश के लिए। आइए अब सुनते हैं पिछले दिनों संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम। कुतुबपुर तहसील जिला हांसी हरियाणा से संदीप वर्मा,
2: छोटी बलिया मुंबई से आमना अंसारी, जुबैदा और नेहा अंसारी,
3: और बेगूसराय बिहार से इकबाल मोगा, देव अजय मोगा और अहमद मोगा,
2: ऊपरकोट मोहल्ला चकुंटी बुलंदशहर से मोहम्मद सईद अब्बासी, निगहत परवीन अब्बासी, शाहनवाज अब्बासी, सरफराज अब्बासी, फरदीन अब्बासी, सुहान अब्बासी, अरजान अब्बासी, अबान अब्बासी और अब्बासी परिवार के सभी सदस्य,
3: और डोंडी दोहारा बालोद छत्तीसगढ़ से देवशंकर तामुरिया, अजय देव, तुषार देव तामुरिया, डॉली बेबी, पूजा तामुरिया, पुष्कर, लेहान, जिज्ञासा, विराट, तेजस्वी और गौरव तामुरिया,
2: और मगरपारा बिलासपुर से वसीम जाटव, अकरम जाटव, आफताब जाटव, मेहताब जाटव, मेराज जाटव और अल्ताफ जाटव।
3: आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। स्वागत है एक बार फिर से आप सबका श्रृंखला ये भी जानिए की अगली कड़ी में। साथियों, इस सप्ताह हम बात कर रहे हैं शीत मरुस्थलों की।
2: अब तक हम चर्चा कर चुके हैं अंटार्कटिक, गोबी और लद्दाख के शीत मरुस्थलों की, तो चलिए आगे चर्चा को बढ़ाते हैं और आज हम बात करते हैं भारत के एक और शीत मरुस्थल की, जिसे लाहौल स्पीति के शीत मरुस्थल के नाम से जाना जाता है। इसे लामाओं की भूमि भी कहा जाता है। तो अजीत जी, एक बार फिर से मैं श्रोताओं की ओर से उसी प्रश्न पर आती हूँ, इसे शीत मरुस्थल क्यों कहते हैं?
3: विमलेश जी, जैसा कि हमने बार बार चर्चा की है ना, कि मरुस्थल केवल गर्म ही नहीं होते, जरूरी नहीं है कि वहाँ रेती हो या गर्मी हो जैसी कि आम धारणा है। ऐसा है कि जहाँ वर्षा मानक औसत से बहुत कम हो, जहाँ वनस्पतियों का अभाव हो, जनजीवन कठिन हो, वो स्थान मरुस्थल कहलाते हैं।
2: जी अजीत जी, लाहौल स्पीति में वर्षा बहुत कम होती है क्योंकि ये क्षेत्र हिमालय की वर्षा छाया यानी रेन शेडो में पड़ता है। हिमालय क्षेत्र की ओर आने वाले मानसूनी बादलों को रोक लेता है, इसी कारण से यहाँ हरियाली बहुत कम देखने को मिलती है। अजीत जी, ये तो बता दें श्रोताओं कि लाहौल स्पीति कहाँ है?
3: विमलेश जी, लाहौल स्पीति है हिमाचल प्रदेश के उत्तरी भाग में।
2: जी,
3: आमतौर पर हम इसे लाहौल स्पीति कह देते हैं, लेकिन दरअसल ये दो अलग अलग घाटियां हैं।
2: जी,
3: यहाँ का तापमान सर्दियों में -25 डिग्री सेल्सियस से लेकर -32 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है।
2: जी,
3: गर्मियों में दिन के समय तेज धूप होती है, लेकिन शाम होते ही तापमान गिरने लगता है, रातें बहुत ठंडी हो जाती हैं।
2: श्रोताओं, जहाँ तक जनजीवन का प्रश्न है, कम ऑक्सीजन, भारी बर्फबारी और लंबे सर्द मौसम के बावजूद लोग यहाँ छोटे छोटे गांवों में रहते हैं। खेती करने का मौसम बहुत छोटा होता है, मुख्य रूप से यहाँ आलू, जौ और मटर जैसी फसलें उगाई जाती हैं। कई गांवों में तिब्बती संस्कृति और बौद्ध मठ देखे जा सकते हैं। अजीत जी, कल आप बात कर रहे थे यहाँ के आसमान की, कोई खास बात है क्या?
3: जी विमलेश जी, यहाँ का आसमान सच में रात के समय अद्भुत होता है। आसमान इतना साफ होता है कि आप आंखों से अनगिनत खूबसूरत तारों और यहाँ तक कि आकाशगंगा के अनोखे दृश्यों का भी आनंद उठा सकते हैं।
2: क्या बात है!
3: इसीलिए तो यहाँ कुछ वेधशालाएं भी बनाई गई हैं। खगोल प्रेमियों के लिए तो ये जगह खास है।
2: क्या बात है! श्रोताओ, आपको एक बड़ी रोचक जानकारी दे दें कि कौमिक गांव स्पीति क्षेत्र का सबसे अधिक ऊंचाई वाला गांव माना जाता है। ये समुद्र तल से लगभग 15,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। ये दुनिया के सबसे ऊंचे मोटर सड़क से जुड़े गांवों में गिना जाता है।
3: और श्रोताओं, ये भी बता दें कि यहाँ ऑक्सीजन की मात्रा बहुत कम होती है, इसलिए नए लोगों के शरीर को अनुकूलित होने तक धीरे धीरे चलना पड़ता
2: जी।
3: है। यहाँ के घर भी लद्दाख की तरह पत्थर और मिट्टी के बने होते हैं ताकि अंदर गर्मी बनी रहे।
2: और अब बात करते हैं इस क्षेत्र के स्कूलों की। इतनी ऊंचाई और कठिन मौसम के बावजूद यहाँ बच्चे स्कूल जाते हैं। गांव में सरकारी प्राथमिक स्कूल हैं। कभी कभी भारी बर्फबारी के कारण स्कूलों को कुछ समय के लिए बंद भी करना पड़ता है। यहाँ हिंदी, अंग्रेजी के अलावा बच्चे भूटी और तिब्बती भाषा भी सीखते हैं। आगे की पढ़ाई के लिए वे पास के

0: काजा जैसे कस्बों में जाते हैं। काजा घाटी के नीचे समतल मैदान में है। बच्चे पढ़ाई के अलावा पानी लाना, भेड़ों और याक की देखभाल करना जैसे भी काम करते हैं।
1: एक और बेहद रोचक जानकारी आपको दे दें, और वो ये है कि स्पीति घाटी में एक गांव है जिसका नाम है हिक्किम। यहाँ स्थित डाकघर दुनिया के सबसे ऊंचे डाकघरों में गिना जाता है। यहाँ आज भी लोग पोस्ट कार्ड और अंतर्देशीय पत्रों का इस्तेमाल करते हैं।
0: जी।
1: इस डाकघर की स्थापना 5 नवंबर 1983 को हुई थी।
0: सन 2022 में इस डाकघर को फिर से बनाया गया और पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए इसे एक विशाल पत्र पेटी या लेटर बॉक्स का रूप दे दिया गया। श्रोताओं, सर्दियों में डाक पहुंचाना कठिन हो जाता है, यहाँ के डाक कर्मियों की हिम्मत को दाद देनी चाहिए। वो कठिन पहाड़ी रास्तों से होकर पैदल चलकर डाक पहुंचाते हैं। तो श्रोताओं, ये थी आज की जानकारी भारत के शीत मरुस्थल लाहौल स्पीति के बारे में।
1: और अब सुनिए आज का प्रश्न आज की ही जानकारी से। तो हमारा प्रश्न है, समुद्र तल से दुनिया का सबसे ऊंचा डाकघर किस गांव में पड़ता है? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
0: समुद्र तल से दुनिया का सबसे ऊंचा डाकघर किस गांव में पड़ता है?
1: आप हमारे IVRS नंबर यानी 8800440559 पर और हमारे ईमेल यानी audio@cieet.nic.in पर अपने संदेश और पत्रों के उत्तर भेज सकते हैं। यदि आप NCERT की पाठ्य पुस्तकें ध्वनि रूप में सुनना चाहते हैं तो उन्हें NCERT YouTube ऑफिशियल चैनल पर या दीक्षा पर सुन सकते हैं।
0: और अब बारी है हमारे शैक्षिक कार्यक्रमों की, तो सुनते हैं कार्यक्रम नकली हीरे।
1: कक्षा 4 की हिंदी के पाठ्य पुस्तक के एक पाठ पर आधारित इस नाट्य प्रधान कार्यक्रम के द्वारा विशेष रूप से संदेश दिया गया है कि किसी को प्रसन्न करने के लिए उसकी झूठी प्रशंसा करने का परिणाम अंत में बुरा ही होता है।
2: नकली हीरे।

0: काननपुर के बुद्धिमान और वृद्ध राजा का एक ही बेटा था। वे दिन रात अपने बेटे के लिए चिंतित रहते थे। वे इसी चिंता में घुले जा रहे थे कि उनके बाद बेटे का क्या होगा।
1: मैं अधिक दिन जीवित नहीं रहूंगा, मुझे अपने पुत्र के लिए कोई सलाहकार ढूंढना चाहिए जो मेरे बाद उसे सही रास्ता दिखा सके।
0: सो एक सुबह उसने सब दरबारियों को दरबार में बुलवाया।
2: महाराज की जय, महाराज की जय, महाराज की
3: जय। बहुत अच्छे से शासन करेंगे।
4: खास ऐलान।
1: शांत शांत, आप सबका स्वागत है। मैंने एक विशेष कार्य के लिए आप सबको दरबार में बुलाया है।
5: हाँ हाँ महाराज, महाराज बताइए,
1: हम आपकी सेवा में सदैव तत्पर।
5: हम आपकी सेवा के लिए हाजिर हैं महाराज।
1: मैं आप सबसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ, कृपया करके स्पष्ट उत्तर दीजिएगा।
6: जी महाराज, पूछिए, क्या प्रश्न है आपका?
1: प्रश्न है, क्या मैं बुद्धिमान और ईमानदार राजा हूँ? मुझे सिर्फ सत्य ही जानना है।
7: निसंदेह महाराज, आप संसार में आप सब बुद्धिमान, सारे संसार में कोई नहीं है।
0: सब दरबारियों ने बारी बारी से यही उत्तर दिया।
1: आप सभी के उत्तर से मैं इतना प्रसन्न हुआ कि भेंट स्वरूप आप सभी को एक एक हीरा दिया जाता है।
0: हर दरबारी को राजा ने एक एक हीरा दिया।
8: जी महाराज, अब बहुत
9: महाराज की जय हो,
10: महाराज की जय हो, महाराज की जय हो, महाराज की जय हो।
1: आप सभी के उत्तर के लिए धन्यवाद।
0: सब दरबारी प्रसन्न होकर चले गए, पर एक दरबारी चुपचाप एक कोने में खड़ा।

0: नवयुवक, तुमने कोई उत्तर नहीं दिया। तुम चुपचाप खड़े रहे। क्या तुम्हें मेरा प्रश्न समझ में नहीं आया?
1: महाराज, ऐसी बात नहीं है, परंतु महाराज, दूसरों ने तो आपको प्रसन्न करने वाले उत्तर दिए, पर क्षमा कीजिएगा, मेरा उत्तर वैसा नहीं है।
0: हम फिर भी आपका उत्तर सुनना चाहते हैं।
1: इसमें संदेह नहीं है महाराज कि आप बुद्धिमान भी हैं और ईमानदार भी हैं, परंतु क्षमा करें महाराज, आपसे पहले भी श्रेष्ठ राजा हो चुके हैं, जो बुद्धिमत्ता में आपसे तो बढ़ चढ़कर थे ही, ईमानदारी में भी वे आपसे बढ़ चढ़कर थे।
0: हमें आपका उत्तर सुनकर बहुत प्रसन्नता हुई। ये लो आपका इनाम, हीरा।
1: धन्यवाद महाराज। अगली सुबह काननपुर के सारे दरबारी दरबार में वापस आए। उनके बीच कुछ चिंता का विषय था। वे आपस में कुछ दबी दबी आवाज में बातें करने लगे।
2: भाई, क्या तुम्हारे साथ भी ऐसा हुआ?
3: मुझे भी ऐसा हो सकता है।
2: क्या नकली? क्या सबको नकली मिला?
3: तुम भी नकली?
2: तुम नकली किराया था?
3: नकली हीरा दे सकता?
2: नकली कैसे आ गया?
3: अरे मैंने तो कई लोगों से पता करवाया,
2: सभी ने बोला कि नकली है।
4: महाराज की।
0: शांत, क्या समस्या है? आप सब इतने व्याकुल क्यों हैं?
1: महाराज क्षमा करें, हम सभी के मन में एक दुविधा है महाराज, यदि आप आज्ञा दे तो हम पूछ ले महाराज।
0: कहिए, मेरी आज्ञा है, आप सभी निसंकोच कहिए।
1: धन्यवाद महाराज। महाराज, हमने इन हीरो की जांच जौहरी से करवाई थी महाराज, लेकिन पता चला कि सारे हीरे तो नकली है महाराज।
0: क्या? और कोई शंका?
1: जी नहीं महाराज, आपने हमें जो भी दिया वो तो हमारे लिए उपहार ही है, बस केवल यही प्रश्न था महाराज, आपने ऐसा हमारे साथ क्यों किया महाराज?
0: ठहरिए, मैं समझाता हूँ। आप सबने मेरे प्रश्न का झूठा उत्तर दिया, इसलिए हीरे भी आपको नकली दिए गए, पर इस नौजवान ने सीधा साधा उत्तर दिया, इसलिए इसे असली हीरा दिया गया। और मेरे बाद यही मेरे बेटे का विश्वस्त सलाहकार होगा।
4: महाराज की
5: जय!
4: महाराज की
5: जय!
4: महाराज की
5: जय!
0: साथियों, अभी आपने सुना कार्यक्रम नकली हीरे। आशा है आपको जरूर पसंद आया होगा। जरा सोचिए, राजा ने दरबारियों को नकली हीरे क्यों दिए? सोचिए। आप कहेंगे उन्होंने झूठी प्रशंसा की थी। जी बिल्कुल सही। साथियों, हमें हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि किसी को खुश करने के लिए झूठी प्रशंसा हम ना करें। यदि कोई बात अच्छी है तो उसकी प्रशंसा जरूर करनी चाहिए, लेकिन बढ़ा चढ़ाकर नहीं। और हाँ, याद रखिए, किसी की प्रशंसा करने में बहुत अधिक समय नहीं लगता, लेकिन उसका प्रभाव बहुत सकारात्मक होता है।
6: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम नकली हीरे। कार्यक्रम समन्वयक प्रोफेसर राजेंद्र पाल, ध्वनि अंकन मंजू कुमारी, कलाकार चांद मोहम्मद और मोहम्मद शमीम खान, मार्गदर्शन विमलेश चौधरी, ध्वनि संपादन और निर्माण जगबंधु जाना। यह कार्यक्रम CIET NCERT नई दिल्ली, भारत द्वारा प्रस्तुत किया गया।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम नकली हीरे।
1: मैं एक नन्ही बच्ची हूँ, प्री स्कूल में जाती हूँ। अलर्ट।

0: तो सुनी आपने छोटे बच्चों के मन की बात। निष्ठा, गुणवत्ता पूर्ण प्रारंभिक बाल शिक्षा, जिससे मिलेगा बचपन को महत्वपूर्ण आयाम। बाल्यावस्था में 6 वर्ष तक के छोटे बच्चों का शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक स्तर पर तीव्र सकारात्मक विकास होता है। जी हाँ, अब महकेंगे आंगनबाड़ी और प्री स्कूल, क्योंकि गुणवत्तापूर्ण बाल शिक्षा से, निष्ठा से खिलेंगे ये नन्हे फूल।
1: और इस कार्यक्रम के बाद आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम पोंगल।
2: ये कार्यक्रम भारत के तमिलनाडु राज्य के प्रसिद्ध त्योहार पोंगल की रोचक जानकारी देते हुए उसके पौराणिक कारणों को भी विस्तार से बताता है और इस त्योहार के मनाए जाने की परंपराओं का बखान करता है।
1: पोंगल।
3: भारत एक कृषि प्रधान देश है। भारतीय किसान का जीवन प्रकृति से जुड़ा रहता है। वो प्रकृति के साथ ही हंसता रोता है, नाचता गाता है। बुआई, सिंचाई, निराई आदि खेतीबाड़ी के सारे काम वो मौसम के अनुसार करता है। जब चारों तरफ हरियाली छा जाती है, वृक्ष लताएं फूलों से लद जाती हैं, तब मानव भी गुनगुनाने लगता है। जब खेत खलियान अनाज से भर जाते हैं, तब उसके पांव थिरक उठते हैं। वो उत्सव मनाने के लिए मचल उठता है। त्योहारों का जन्म यहीं से होता है। पोंगल नई फसल का त्योहार है। ये संक्रांति के दिन मनाया जाता है। तमिलनाडु का यह प्रमुख त्योहार है। ये जनवरी में मनाया जाता है। पोंगल में खेतों से सुनहरे रंग का नया धान कटकर किसान के घर आता है। गन्ने के खेत की फसल तैयार होती है। बागीचे में हल्दी का पौधा लहलहा उठता है। इन्हें देखकर किसान का मन नाच उठता है। उसके जीवन में मिठास आ जाती है। नए चावल का मीठा भात बनाकर सूर्य को चढ़ाया जाता है। इसी मीठे भात को

पोंगल कहते हैं, इसी से त्योहार का नाम पोंगल पड़ा है। तमिलनाडु में पोंगल त्योहार पौष मास में आरंभ के 4 दिनों तक मनाया जाता है। पोंगल के पहले दिन लोग भोगी का त्योहार मनाते हैं। पूरे घर की सफाई की जाती है, इससे पर्यावरण स्वच्छ हो जाता है।

स्वच्छ हो जाता है। भोगी के दिन शाम को बच्चे ढोल और बाजे बजाकर खुशियां मनाते हैं। पोंगल के दिन घर आंगन को रंगोली से सजाते हैं। नहा धोकर सभी लोग नए कपड़े पहनते हैं। उस दिन सब कुछ नया होता है। आंगन में अंगीठी जलाकर नए बर्तन में पोंगल पकाया जाता है। बर्तन में हल्दी का पौधा बांध दिया जाता है। गन्ने के रस में नई फसल का चावल पकाया जाता है। जब चावल उबलकर ऊपर उठता है तो उसमें दूध डाल देते हैं। दूध के साथ उफनता हुआ पोंगल बर्तन के ऊपर से उमड़ता है और चारों ओर रिसकर आंच में टपक पड़ता है। उस समय चारों ओर इकट्ठे लोग खुशी से नाच उठते हैं और जोश में चिल्लाते हैं, पोंगलो पोंगल, पोंगलो पोंगल। उन्हें प्रसन्नता होती है कि सूर्य और अग्नि ने पोंगल का भोग स्वीकार कर लिया है। लोग अपने आस पड़ोस में पोंगल बांटते हैं। उसके बाद मित्र और सगे संबंधी सब मिलकर बढ़िया भोजन करते हैं। पोंगल के दिन हर तमिल भाषी, चाहे वो भारत के किसी कोने में रहता हो, अपने घर पहुंचने की कोशिश करता है। विवाहित लड़कियां पोंगल मनाने अपने मायके आती हैं। तीसरे दिन माटू पोंगल मनाया जाता है। तमिल भाषा में माडू गाय बैलों को कहते हैं। माडू का अर्थ धन भी है। पुराने समय में गाय बैल ही हमारी संपत्ति थे। माटू पोंगल के दिन गाय बैलों को अच्छी तरह नहलाया जाता है। लोग उनके सींगों को रंगते हैं और उन्हें रंगीन कपड़ों से सजाते हैं। उनके गले में फूल मालाएं पहनाते हैं तथा उन्हें गुड़ और अच्छी अच्छी चीजें खिलाते हैं। शाम को मैदान में बैलों को दौड़ाया जाता है।

0: चौथे दिन कानुम पोंगल होता है। खाना बांधकर पूरा परिवार घर से बाहर निकल पड़ता है। जगह जगह मेले लगते हैं, लोग मेलों में घूमते हैं या आसपास के स्थान देखने के लिए चल पड़ते हैं। इस तरह चारों दिन लोग अपने दैनंदिन कामों से छुट्टी लेकर इस त्योहार का आनंद लेते हैं। खेती से संबंधित यह त्योहार पूरे भारत में किसी न किसी रूप में मनाया जाता है। गुजरात से लेकर बंगाल तक लोग इसे संक्रांति के नाम से मानते हैं। महाराष्ट्र में यह तिल गुड़ का त्योहार है। लोग एक दूसरे को तिल गुड़ देकर कहते हैं, तिल गुड़ घ्या गोड़ बोला, तिल गुड़ घ्या गोड़ बोला, अर्थात तिल और गुड़ खाओ और मीठा बोलो। पंजाब में संक्रांति से एक दिन पहले लोहड़ी का त्योहार मनाते हैं। लोहड़ी का अर्थ है छोटी या छोटी संक्रांति। अरुणाचल प्रदेश में पानुंग का त्योहार भी इसी समय मनाया जाता है। विविधता में एकता भारत की विशेषता है। एक ही त्योहार को लोग विविध रूपों में मनाकर भारत की सांस्कृतिक एकता को मजबूत बनाते हैं।
1: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम पोंगल।

0: आर एब सी के साथ हमारा आज का प्रसारण यहीं पर समाप्त होता है, तो अपने मित्र अजीत
1: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ आज्ञा दीजिए।
0: नमस्कार।

Sigo.

शेयर बाजार में रहने आए भारतीय भारत के बारे में एक आबाद शहरी और बैरूनी

आसपास का मौसम बेहतरीन हो जाएगा। वो एक पेड़ आपको कितनी तरजीह देगा आपके आसपास के माहौल में,

Thank you.

साथ ही आज का फ्री मौसीकी का प्रोग्राम अब खत्म होता है। ये आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है। मैं आप सुन रहे हैं मीडियम में विकलांग।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: कैंसर को हर गुयानुक बेसिक चीज मतलब डिफरेंट पार्ट होते हिस्सा होते हैं मीक पो शू लकपा कंगमा गति स्नींग पो गति छिनमा गति गंग में हिस्से सबसे बेसिक चीज यो सेल सेल जरे हा यूनिट पो मान बेसिक उदे सेल पो गति डिवाइड छिन छ नॉर्मली गति रुगुए रुगोस पे हिस्सा बा गति ग्रोथ ई कंट्रोल सिस्टम छ खाची खाची चिंज बना उदे सेल पे नंगोस पे न्यूक्लियस दे नंगोस पे आर एन ए डी एन ए जीन्स जन चो तनाति मतलब अति फूटी जाजो खराब छाना अति लंगजो दुगजो खराब छाना ज्यादा रेज मांगो छाना इन्फेक्शन छाना केमिकल छाना दो निस्बत से गता माथोंग गता माथोंग मीज माथोंग माथों दे माइक्रो लेवाली का इन्फ्लेमेशन छाना दो निस्बत से उदे जीन सुनिया उदे न्यूक्लियस पे अनु उदे आर एन ए डी एन ए अनु चेंज हो म्यूटेशन म्यूटेशन यो मना गता मना पता छ जमेन की ड्यू चौक्सी सोंग जरे मगर सेल सुनी ग्रोथ पो चेसना ची होते गति रोज गति सेल से ग्रोथ पो ची ओमत रेगुलेट बचिन देखो साम से सेल रोगोशा उतना दे सिक पो खो डिवाइड चेंज अचिन डी अनु चीज अचिन बना अनकंट्रोल्ड रुगुए मेकेनिज्म से बाहर सेल सुन ग्रो चेंज है अनरेस्पॉन्सिव गति मेकेनिज्म युद्ध कंट्रोल दे रेस्पॉन्स यहाँ मेत पा खे कंट्रोल यहाँ मेत पा माना बड़े चेंज सों से ना तनक हो चाहे गति रुस्पे के उतना रुस्पा यानो को मतलब ग्रोथ पर सों से स्वेलिंग दन चीन या मैदे यानो की उतना दुखुरी यानो ग्रोथ दन चीन या गति से इन

जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।

0: रेडियो स्टेशन इकना यन खनि मीयोदना खोंगस दयाजेत की प्लास्टिक गुन यूज मबोस और एनवायरमेंट डे बोस और स्कूल इनना कॉलेज इनना हर जगह बोस और प्लास्टिक यूज में बचा शुक्रिया
1: दरसखपा यंतस World Environment Day Festival mat bi jakchik malak mo matang de school la government higher secondary school sangri shelsaf kan phuni kana tsuri nyanin chot pin programi lajuk pika yantang sopa medi chami mikana gazal chik lepchuget gazal plan tes ngan mazat

0: Sherbana chungni phe deren te di program pula nyanen chet pin program asir tang kan poin min Ali Asghar yung di program e producer poin min Gulzar Hussain. Media mayo don FM channel ikat yu Akashwani Kargilin Vox padare tu sotruk chendu kasta Akashwani Dehli na angrezi na hindi khabarun relay pet. Relay la ente jangchi basat.
1: नमस्कार आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज गुजरात के सूरत में सड़क बिजली और औद्योगिक क्षेत्र से जुड़ी 18,800 करोड़ रुपए से अधिक की कई विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि ये परियोजनाएं राज्य के विकास को गति देंगी और लोगों के जीवन को बेहतर बनाने में सहायक होंगी। श्री मोदी ने विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर देश के सबसे स्वच्छ शहरों में शामिल सूरत की प्रशंसा की।
2: सूरत सिर्फ स्वच्छता और सर्कुलर इकोनॉमी तक ही सीमित नहीं है, बल्कि ग्रीन ग्रोथ के दूसरे माध्यमों का भी अभूतपूर्व गति से विस्तार हो रहा है। सूरत ऐसी व्यवस्था बनाने में जुटा है जहां सड़कों पर चलने वाली सारी बसें इलेक्ट्रिक होगी।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि पूरी दुनिया हरित और स्वच्छ भविष्य की ओर बढ़ रही है तथा भारत भी इसमें सक्रिय योगदान दे रहा है। उन्होंने कहा कि भारत प्रकृति के साथ प्रगति का मंत्र लेकर आगे बढ़ रहा है।
2: आज भारत प्रकृति के साथ प्रगति का मंत्र लेकर विकास कर रहा है, इकोनॉमी भी इकोलॉजी भी। सूरत में तो ये प्रत्यक्ष दिखता है। आजकल सूरत की सर्कुलर वाटर इकोनॉमी की बहुत चर्चा होती है। यहाँ शहर के वेस्ट वाटर को ट्रीट करके इंडस्ट्री को सप्लाई किया जाता है। इसे गंदे पानी का मैनेजमेंट भी हो जाता है और पानी से कमाई भी होती है।
1: इससे पहले सूरत में प्रधानमंत्री ने हजीरा में वर्तमान औद्योगिक तथा बुनियादी ढांचा परियोजनाओं की समीक्षा की। प्रधानमंत्री आज दमण भी जाएंगे जहां वे लगभग 2,970 करोड़ रुपए की विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि सीमा सुरक्षा को अधिक मजबूत बनाने के लिए केंद्र सरकार स्मार्ट बॉर्डर परियोजना को अंतिम रूप दे रही है। गृह मंत्री आज त्रिपुरा में भारत बांग्लादेश सीमा पर लंका मोरा सीमा चौकी पर प्रहरी सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने बताया कि ये परियोजना अंतिम चरण में है और अगले वर्ष सीमा सुरक्षा बल तथा सशस्त्र सीमा बल की तैनाती वाले 7 से 8 संवेदनशील क्षेत्रों में इसका प्रायोगिक चरण शुरू किया जाएगा। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि अंडमान द्वीप समूह के पूर्वी तट से लगभग 15 किलोमीटर दूर श्री विजयपुरम में प्राकृतिक गैस का भंडार मिला है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री पुरी ने कहा कि ये खोज अंडमान सागर की विशाल ऊर्जा क्षमता दर्शाती है। उन्होंने कहा कि ये खोज इस क्षेत्र में चल रहे अन्वेषण अभियान की सफलता का प्रतीक है। वित्त वर्ष 2025-26 में भारत की आर्थिक वृद्धि दर बरकरार है। वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद में पिछले वित्त वर्ष के 7.1% की तुलना में 2025-26 में 7.7% की वृद्धि का अनुमान है। सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के अनुसार

2025-26 में वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद 323 लाख करोड़ रुपए से अधिक हो जाएगा। विज्ञान और प्रौद्योगिकी तथा पृथ्वी विज्ञान राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने आज जम्मू में क्षेत्रीय मौसम विज्ञान केंद्र का उद्घाटन किया। उन्होंने कहा कि इस नए केंद्र से जम्मू कश्मीर, लद्दाख और हिमाचल प्रदेश के लिए मौसम पूर्वानुमान सेवाओं को मजबूती मिलेगी। श्री सिंह ने कहा कि सटीक और समय पर मौसम पूर्वानुमान से कृषि, विमानन, पर्यटन और आपदा प्रबंधन जैसे क्षेत्रों को लाभ होगा। असम मंत्रिपरिषद का आज विस्तार किया गया। गुवाहाटी में आयोजित समारोह में 12 नए मंत्रियों ने शपथ ली। राज्यपाल रक्षम प्रसाद आचार्य ने इस अवसर पर नए मंत्रियों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। इस विस्तार के बाद असम मंत्रिपरिषद में कुल मंत्रियों की संख्या बढ़कर 17 हो गई है। पद्म पुरस्कार 2027 के लिए नामांकन 31 जुलाई तक किए जा सकेंगे। गृह मंत्रालय ने बताया कि पद्म पुरस्कारों के लिए नामांकन और अनुशंसाएं केवल राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल पर ऑनलाइन ही स्वीकार की जाएंगी। भारत एशिया कप अंडर 18 हॉकी टूर्नामेंट के फाइनल में पहुंच गया है। जापान के काका मिगाहारा में आज सेमीफाइनल में भारत ने पाकिस्तान को 5-3 से हरा दिया। भारत की ओर से आशीष तानीपूर्ति ने 4 गोल किए, शाहरुख अली ने 1 गोल किया। फाइनल में कल भारत का सामना जापान से होगा। इससे पहले अंडर 18 लड़कियों की टीम सेमीफाइनल में चीन से पराजित हो गई। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: पापा ये सब?
2: हाँ, जो चीजें सालों से बेवजह पड़ी हो उन्हें हटा देना चाहिए।
1: ये भी दादाजी की पुरानी पासबुक और FD।
2: अरे ये कैसे रह गया?
1: पैसे गए?
2: नहीं नहीं नहीं, उपाय है। बैंक खाते को संचालित करते रहना चाहिए वरना खाता इनऑपरेटिव हो जाता है। ऐसे में बैंक से संपर्क करें, खाता सक्रिय करवाएं और आपकी रकम जो है उसे ब्याज समेत क्लेम करें।
3: दादू ये
4: RBI कहता है
5: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
4: सही कह रहा है।

0: ялчук на тариканы очай на ка цошика бачу паргушадин фрунда
1: каза зарел мар яламос фруни фила сабсе пела вам ап екзерсайз бачу паргушин сар кон кон из мана екзерсайз мана мабот пана кон тапши га жинте екзерсайз шик панг мана кон сахал жинте сорчин сар я каса ди филанг аче сабсе пела кон халка екзерсайз вам ап екзерсайз ре билкул кон боди из халка стреч бачу пула тен ми фила сунте сунте екзерсайз като бачу пасар дяу гой кана кон старт басе канг ме тил сак пик натес Конга, дасуга кунтир гу скул чук пасар я. Дир гяб нанг ачес халка халка. Дия йога стендинг йога гончин сар, дуна сетинг йога. Кога ланг сам байнен чин, куч йога като, ор куч йога като, се гадук сам байнен чин. Исле нанг ачес пехла конга кунтир гу, билкул кунтан бэленс он чук пахила. Кунтан а кунтир гуи кабилият пу, кунтан кунтир гуи чамсик. Ува дук, чи дук, зерхан, кунгар такспача чук пахила. Кунгар ачес пехла сунце сунце йога като, кунгар ба чук пат. Таки кунгар такспача чит кинг. Нас гарир гой кацан цик жит курба янчадук чибан янчадук гацок шибасен га йога бан янчадук япки гати сугури ка куч фрука то узок зондук мотапа сон сон до сар кван мотапа сон сот пана кван дахан гата экзерсайз шик ба та мана кун сай бас уди пропер кван уди шакал пута ма ян ма мен до сар я каса ян ма ян мана гатес кван уди фрун ла гатес сакси кян ма ян нан чан проблем мет хосла тан се чан проблем мет кян дин ма ян аскян ма ян нан сламан क्या कुछ न कुछ दिन के बाद क्या लोपशा इन चंग मसला मिन को खतरे का मिन जबकि गाता सुनचो तन हमें गाता एबीसीडी में उम्मत पिन कुलिया कुलिया गाता स्कूलिया यों दे गाता दी माहौल पुथों जक बजा गाता दिया यों इंचान गाता हर चीज बुगामा यंबो यंबो लोप सिंचे दिया चोला फिजिकल एक्सरसाइज होना दिया इन कि जक बजा जक्षी गानों गाता लोपशा मिन जक बजा गाते स्टेप बाय स्टेप ब्ली रिल्सा इंचान गातो गाता गाती एक्सरसाइज पर बाइंग एंड चाइन और सिर्फ गाता एक्सरसाइज फायदा सिर्फ गाता और गो मूवमेंट बचा सा मीन जबकि गाता गाती रूही तौर पर गाता तैयार सचिन गाता गाती जिस्मानी तौर पर गाता तैयार सचिन या गाता गाती दिमागी तौर पर गाता द्याखुरी का जागे का तैयार लुसिन उदी चीज सुम का गाता फायदा हो चिन दी योगा नहीं वजह
0: से कोई लसम मन आदम मन अपनी इंसान गते से जिंदगी के मिंग ना सख बसन ल गते रुगु नन में गता लुस पर योगा मल सचिका ये रस गचुक लशि बुक सम ना रुगु नन में में ना गचुक लशि गता बांगिन ममेत ती शे सिल फ्रुन इन नजु सुकुल तंग न गतो को होर गो इन नन में मलुस ना खु सुकुल ल छांगिन ममेत खु गचुक एग्जाम चिक कंडेक बांगिन ममेत जन चोसला गचुक लस बखान चिकिन न गता रुगु नन में मलुस ना Kwa gacuk lashikin na bangin met chana di rgu nan met jakpa ming na sak basit nan lana di zoksi exercise sun yogan ngatin di rgu imina tsasayin tanju ila sabiri kandu ti praluks bet ki ngatis diri ngispele tongpo yoga in mana yoga fantoks kato eri kina len me praluks bet paju ki ga pruchigis ga mimang shikis yoga bana kato yadi yoga ehmiyadri kwe fantoks chi chiri rgu ka tongcha zinju gacuk gacuk zermon yoga islo le gantan falte cha cha zin
1: kasa bakshiz man ardamu mosa zaya सर मान योगी फंतास मन अशोभत सरया जबकि गती फू गो छुंचे होंदो सरया दिफला दखन गची योगी पोस्ट चो ताडासन रे सरया ते ताडासन पु जगा कतोबाना कतो जर्चिन की दीर्घई मसल सगंगमा थेंजिन जर्चिन सरया गते जुगस थेन माना गती गो कुल्या गेन लयोंग मचो सोरचिन गता थपसी का सोचा मिन सर कुछ टाइम बस इरगत ना गता काफी दू गता सही सों सुखा लंगरा हाइड योंग मत सोरिन दुख जखन चीज सोच सोच चिन सर का साया बाकी यंग दस उल्ला बहुत से एक्सरसाइज तो जो कि गति हार्ट डिजीज फिलाओ योंग चिन सर गति स्किन अजर मोंग खान सा दस उल्ला गति शकां वांग युंटा सों सोत खान लंगता कुछ एक्सरसाइज का तो उन चिन योगी उदुनी वजह से का काफी रियल भाषा चिन सर या बाकी दस उल्ला यंग एक्सरसाइज का तो जो कि गति गता दिमागी तौर पर परेशानी होंगे दून गति कम भी फिला यंग दसला गति यंग कुछ चीज का तो जो कि गति ब्लड सर्कुलेशन पु मन गलवा जाचिन सर यंग गति लंगति मसल सखयो गति रगु यो दान गते जगह स्ट्रेस बना का तो दस जगह योगा का तो बना का तो बिल्कुल गतं फिजिकली फिट सचिन सर गतं तंदुरुस्त सचिन गतं ताकि हर कोई चीज आराम बसिंग बांग चिन और सच चीज अगर कि गतं लशिक्स को ना या सच चीज गतं दी चीज पु क्या बोझो जना खुद मन क्विकनेस यंग एक्टिव बस खुद तंचिन सर या जबकि दस उल्ला गेम से आने का दंग गा इंसान पर सुस्ती का तो बस दुगना का तो खुद गेम है ना ज्यादा से ज्यादा परफॉर्म चेक रिदमिक बांग यान मा मिंदु जबकि गा गति स्टूडेंट चेक गति जस बाबा से योगान बस से या दस उल्ला एक्सरसाइज सुन बाना का तो खुद खुरी गेम से आनों खुरी दिया योगा बस भी फायदा हो स्तन है खुद गतांग सक पे लेप चुके दो सारे गतांग गेम है अनुक्त हो दो कि फुसक माना सुस्ती बस दुख से या आगे पीछे बस दुख से ब्याग हमें वह उजोहात पूछें तो खूब फिजिकली अनफिट होता ना जबकि दियोगान

0: था थों दुक की रुगोनी का खों गेम चिक्स थे ना का तो बिल्कुल हुशियार ना बोर्से से एक्टिव दुक से खों दी गाता गेम हुई खुंती योत पिटाइले नुं गाता स्थान में कोशिश बंदु सर रहा
1: बाक्षी जिला से ता गा मीची का योगा सब तुक समझना घूमे का यंत्र का तुक सिटे विल्सा बजु खासकर धर्म सुनते दरे सिंह अति मीमां सुन ला दुन ला योगान एक्सरसाइज सुन कम बस युद्ध पना गाता शकां तकलीफ शकपा गाता तकलीफ छात हों जु गोमा दी धर्म सुनते ने या बच्चा ने का तुक जोश के बच्चों पर जु चाना चम ची जगह गया ना देर पंखी गाता थों मशीन से जु
0: कसा बाक्षी सर मार के लामोस योगा बेफिला गाता गा मा चंग मुश्किल चिंग में सर या योगा माना आसान ही ना ऐसे गातंग दखन दर्शन दे क्या उस गुस्से मार डुलो क्या कोलंग से डुलो जरूरत मतलब पु योगा मतलब पोज इन सर पोजीशन दर्शन में नगाते इंग्लिश का जस्ट उल्ला क्या डुल भी जोस्तार्च चोस जरी ना पसर या जस्ट उल्ला जितना गाते जो दी पोजीशन उस चोन का तो गातंग गाती माहौल पे अनु गातंग गाती दिया यूली निजाम पे अनु कुर्देमो बस गातंग दुख पी ढांचा से शिनसुक गातंग गाती गुया अनु गाते एक्सरसाइज बना फनखे थो शिनसुक गातंग गाती गुया अनु बाकी जस्ट उल्ला योगा बच्चा मुश्किल ची गांव मामिंग में योगा मान आसान चीज हो अगर की ग्यारह ट्रेनर ही कहना यार इसका तो योगी बारे अनु का तो लेन ना का तो और यार योगी फनखे इनका तो लोप शुक्त सामना का तो चंग मुश्किल ची मामिंग में पहला खोस खोरी तरीके का सिस्टम बाय सिस्टम खोज रदमो बदल सभी कोशिश बचिन योगा सामना खो यहाँ चंग मुश्किल ची में माँ खतरे यहाँ चंग में बिल्कुल यार आसान तरीके का लोप सा लोप छिन अगर की यार सही बस ध्यान दंग से योगा जरूरत सर सबसे मेन चीज पू खेरा तीन चीज यम्बो जक पर गोशिन बिल्कुल सबसे पहला खीरी गु देर यमना खीरी दिमाग पू खीरी संभाव दे सुपू ख्या हमेशा यम्बो जक पर गोशिन वननेस चौर गोशिन ताकि खेरा जगह चिकची का ख्या तखपा चुकी नारी लतपाओ नारी संभाव नारी गु सुमका यम्बो उत्पन्न आ रहा कोई भी चीज शिकबा यंचा इन जरे ख्या संभव जिनकी योगा अनु की सबसे पहला ख्या फिजिकली फिट उमर गुशिन मेंटली प्रिपेयर्ड उमर गुशिन और रिचुअली हम ख्या तैयार उमर गुशिन ताकि ख्या यकता बसे दी चीज सुमका यकता यूनाइट बसे का तो खेस का तो बना का तो ख्या बेहतर से बेहतर बाई यंचा इन जैसे ना बसर या ताकि खेस अगर की दी चीज सुमका यंबो का तो बना का तो गाता जैसे में ना फ्याक बना का तो वो खेस ध्यान तक सपोज खेस खुदा ने बो राबिता बस इन जैसे ध्यान चुख सुखला दी योगा अनु जरूरत की खुदा ने बो खेस राबिता बस इन बिल्कुल खेस दिमागी तौर पर ख्या जगह का तैयार दुख रूही तौर पर ख्या जगह का तैयार दुख और फिजिकली ना ख्या ऑलरेडी दी का तैयार युद्ध लेकिन जैसे दया चीज उन गांव तैयार बसे बनेगा तो ख्या की एक्सरसाइज पू काफी फायदामंद
1: बख्शी जुलेसमोल यरंग फिजिकल टीचर जुक सिंह जुग अतिर यसिर करगिल हम स्कूल ने का यंतस यंति खिदमत उन तंग नत इलिया सब नति फ्रून ला जु स्कूल के यंत एज ए फिजिकल टीचर सबा छतना दितो से योगान एक्सरसाइज सुन गतो जो शिकल सबा जु फ्रून का सु रिस्पोंसिबल सुन और दरे गाता जक बजक जो सब्जेक्ट उन ने चिचिंग गाता फिजिकल एजुकेशन सब्जेक्ट दाने था दरे दी स्टेज पे के बना सम से दी फिजिकल एजुकेशन इज सब्जेक्ट पु ससा दुजी दौर पे नो
0: कासा शर्मा गलामोस माना जरूरी दुख सर आधा खानी टाइम पे अनु फिजिकल एजुकेशन सिलचाओ क्योंकि होल गति माना बॉडी बारे अनु या गति बॉडी बारे अनु जरूर दुख सर फिजिकल एजुकेशन मतलब पुखरा ते इनकी गाता फिजिकली जब ना जिस्मानी तौर पर गाता तैयार भी फिला या फिजिकली फिट जक भी फिला वेल बींग जक भी फिला गाता दी सब्जेक्ट पु माना प्रोफेशनली गाता यों सीन की गाता तैयार भी फिला जब तक की गति गु सही में ना कहता गाता कोई भी चीज सही तरीके का बांग में सर या इसलिए गाता दी चीज पु मां जरूरी दुख सर गाता तखपा उम्र गोशा दुख गाता कि फिजिकल एजुकेशन मतलब पूछी इंदर खान पु दखा नहीं गाती फुरफान ला उदनार तखपा उम्र में सिर्फ गेम चितर से चा समझो यूं दो सर या न कि गेम चितर से चा मैं जब तक कि गाता गेम चिस्ते फिलांग गाती सेहत पु सही का तो मैं गाता हूँ गेम पु गाता और गला से गला बा यन मामे सर या इसलिए ज्यादा से ज्यादा गाता सबसे फिजिकल एजुकेशन मतलब पूछुत पर गोशा दुख और ध्यान चोला हमेशा गाता स्कूली का इन्ना करता हूँ ना कि खाली गेम चिता से जग पर जरूरी मिंदु कि गाता खो उधर तख्स पर बार गोशा तो कि गाता गाती रुको गज ओक्शिबा से इस्तेमाल बार गोशिन और गज ओक्शिबा से गेम है अनु रग्याला से रग्याला परफॉर्म भी फिला रग्याला से रग्याला अंजाम तक भी फिला गाता गा एक्सरसाइज सुन बार गोशा तो गा योगान बार गोशा तो दी फिला मा जरूरी दुख सर कि खो पहला गो मा उदी चीज से बारे अनु तख्स पर तक भी फिला उदी चीज से फिना अवेयर भी फिला कि फिजिकल एजुकेशन मतलब पूछिन न कि गेम चितर से चाहो फिजिकल एजुकेशन में न्यास कोई गेम चित सब चाहता फिजिकल एजुकेशन में बल्कि पहला गोमा खीरी रुगोई बारे अनु सिलचा खीर रुगो ची बसे ख्या तैयार बचिन ख्या गा जरमो होना गा चोक सिची बार गोशिन या गा चोका ख्या मोतुगलां से मॉर्निंग एक्सरसाइज बार गोशिन

야양 녹 지지 요제르비 스콜 라스베리 카직 옌티드 녹 프로추겟 스페이스 저바나 무니아디 토르퍼 나티 스카티가르 나카토 스페이스 저나데 스남즈레 토마나 나티 디 두니아티 하스티 카나 나테 다르티 카나 두니아테 사토르 카나 스남나 사셀타나 디스나미 장퐁아 타나 스군포 토모주 스군포 Ча тонсен дербана асал пика натанга дарасел натес нам полта на като асал пиан натанс мун помет. Нати ди дуният пола атмосферик зиринч, атмосфер зиринчик хавай, яне ки физай нати ура камбал чи чохла физа пус нати дуният пола жил тумсе гол чи анук саметай басо. Ди атмосфери мотай лагбак 100 километр чи зербаджу. Аб ди атмосфер анук Натанга бохот сари гейсис ке мекчерон маджу. Натанга ди шнам пус мунпо тонгчас пу дяна атмосфери гейсонис басенджу. Шнам ян на ниме от пу йонча на натанга агар чучи кадра чика я шича чика я натанга призам чика фокпа на натанга тонгмат ки ниме от пу саат калар янук натанга таксим чадзере джиску ам рейнбо зере зер баджу. Дяну на джун хи ди ниме от пу нати ди атмосфер пика фокпа на blue na ati violet red ut khani violet color ut khani short wavelength di molecule sun atanga di atmosphere pus zyada phailai bachu ju scatter bachu de wajah se ke atanga sabse zyada blue light pungati scatter bana disna mir rang pung atanga blue thong bachu ju albata di atmosphere pu cross base ngatang space na atmosphere dharti na gen la chana ka to atanga दिशनम पुपुरा नकपो थोंच जुंजु जु कि जिसमें हमें कोई रोशनी निमे रोशनी में पयंग गाची शिकी रोशनी दोनस्कर में रोशनी में पंगा तांगा थोंच असमें छु जु तांगा तेस स्पेस बारे अनुक्सपेरा तांगना का तो स्पेस जरबना छो खाली जगह किन जु स्पेस जरबना खेला जरबना गातेस नम जदर नम ये हस्तियों नुक दुनिया भरी गैलेक्सी गातेस यूनिवर्स जरे जु गातेस कायनात जरे तांग हिंदी पस ब्रह्मांड जरे जर बतांग दे ब्रह्मांड प्यानुक न्यूमेरस अनकाउंटेबल मिलियंस एंड बिलियंस लगभग करोड़ों गैलेक्सी देनुक खोरे ने तो दे गैलेक्सी ने उन्होंने गैलेक्सी चिचिक नते मिल्की वे गैलेक्सी जर बतायं कि दे अनुक करोड़ों मिथिक प्यानुक नतांग स्कर्मा इतन जो दे अनुना स्कर्मा चिचिक नति निमाए नंग कि गावे इरित गिरित नति दी प्लैनेट सुन जिस नति सैयारान दी निमे इरित गिरित निमे ग्रेविटेशनल पुली हिसाब का खुंती ऑर्बिट चियानुक खोरे नुक पतंग नतांग अर्थस्पायो कि जब भी ngati earth pus yani ngati di duniya e satok pus dingi me irit girit chakkar chichik tang mana ngate zwa lokhor chik cha zirbatang da zotla alag alag planet is alag alag waqat len chin ju di duniya di ngime irit girit chakkar yani ki ek round chik pure khor bhi mingna ya yu ngate zes de kana topic chik chik ki ap dianu ngate zes ngati surash irit girit ngime irit girit ngatanga नौ प्लेनेट जबत रिवायत नखा चीज नो सबसे आठ प्लेनेट जैसे बनो प्लूटो ड्वार्फ प्लेनेट यानी कि छुनसे प्लेनेट इन में हो जैसे कि प्लेनेट यानो सयारा नुक्सिया मचाना नतेस नक्सा आठ प्लेनेट होते जरे जरे जरे बचा नी नतेस जिस लाइफ ऑन मार्स जरे जरे लाइफ ऑन बाकी प्लेनेट होने का बाकी सयारा ने का नता जिंदगी बाचा मांगन में नता मर्क्यूरी हो वेनस हो देखा नता सैटर्न हो नेपट्यून हो जुपिटर हो जू ने का नता जिंदगी बाचा मांगन में देखो जू नता ताचाना वेनस ना मरकरी का तोस्ताना का तो मती निमाना निमोरियत खानी प्लेनेट इन यानी कि पहला ना दूसरा प्लेनेट निमाना निमोरी हिसाबी का तो दुनिया इसके का ज्यादा छत शदीद गर्मी शदीद टेम्परेचर युद्ध पी हो जैसे का टेम्परेचर उन लगभग लगभग होंगी सैकड़ों से लेके हजारों डिग्री सेल्सियस तक होंगी सथोक पो काफी छनते हों चिंसुक दे वजह से कदे गंगाता जिंदगी किसी चीज का जिंदगी छा देखा जिंदगी बंगाता मुश्किल क्या मुमकिन चिक मत पहनचो दाना जुखला मार्स ना एल्टिक पंगाता जितने भी आता सयारा योत दो निकंगाता जिंदगी बाचा मांगन में जबना दो नतांग दची गेसी गोल का तो इंसुचुया अगर दो निकंगाता छोक का तो समसे टेक्नोलॉजी तरक्की बस अगर दे गले बुक सम ना का तो देवंगता गेसी थिल चानु बुति छाचोक्षी छेन छाचिन चुक कुले कुले आदि नंगोस पहले बिचर नंगतिका प्रेशर ज्यादा सोसे गति का दबाव ज्यादा सोसे ध्यान उंगतां सर्वाइव छे चंग इमकाना चिकमेत पेन तो गेश अनुंगतां छे बसे सर्वाइव छो लूस तांगतां मार छिक छे मार से के जिंदगी बा पॉसिबिलिटी या इमकाना छिक चंग यो तमे जूसर बना ध्यान उंगति टेक्नोलॉजी स्पेस टेक्नोलॉजी अनु साइंटिस्ट ने रिसर्च बसे बहुत सारे गतांगा

0: आपको रेजिलियंट बना सकती है, ताकि जब जब ये क्लाइमेट एक्सट्रीम्स आएंगे, जब जब ये क्लाइमेट डिजास्टर्स आएंगे, तो उसका हम पर असर कम पड़ेगा।
1: वज़ीर-ए-आला उमर अब्दुल्ला ने समाज के हर तबके पर जोर दिया है कि वो जम्मू कश्मीर में माहौलियाती निज़ाम को तकवीत बख्शने, नीज यहां के सब्जे और हयातियाती तनावों को आने वाली नस्लों के लिए महफूज रखने में अपना कलीदी रोल अदा करें। माहौलियात के आलमी दिन के मौके पर अपने पैगाम में वज़ीर-ए-आला ने कहा कि हुकूमत देरपा तरक्की के अहदाफ की हुसूल याबी के साथ साथ माहौलियाती तवाज़ुन को बरकरार रखने की वादाबंद है। वज़ीर-ए-आला ने आज जम्मू कश्मीर हाउस नई दिल्ली में एक पौधा लगाया। ज़राअत के वज़ीर जावेद अहमद डार ने भी माहौलियात के दिन के ताल्लुक से अपने पैगाम में किसानों, नौजवानों, तालीमी इदारों और सिविल सोसाइटी तंजीमों पर जोर दिया है कि वो माहौलियात को तहफ्फुज़ देने और बेहतर मुस्तकबिल को यकीनी बनाने के लिए मुतहद होकर काम करें। उन्होंने कहा कि जंगलात को फरोग देने के साथ साथ यहां के आबी ज़खायर को तहफ्फुज़ देने की अशद जरूरत है। आज के दिन की मुनासिबत से जम्मू कश्मीर पुलिस के एहतमाम से यूटी के सभी अजला में तकरीबात और शजरकारी प्रोग्राम मुनक्कद हुए। डायरेक्टर जनरल पुलिस नलिन प्रभात ने डिस्ट्रिक्ट पुलिस लाइन श्रीनगर में शजरकारी मुहिम की कयादत की। माहौलियात के आलमी दिन के मौके पर बीजेपी जम्मू कश्मीर के सदर सत शर्मा और जनरल सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन अशोक कौल के अलावा पार्टी के कई दीगर लीडरों ने जम्मू में पार्टी के एहतमाम से मुनक्कद शजरकारी मुहिम में हिस्सा लिया। पार्टी के सीनियर लीडर और राज्यसभा मेंबर इंजीनियर गुलाम अली खटाना ने गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज बोनियार बारामुल्ला में शजरकारी मुहिम में हिस्सा लिया। माहौलियात के आलमी दिन के मौके पर सीनियर सियासतदान और साबिक मरकजी वजीर सैफुद्दीन सोज ने कहा है कि जम्मू कश्मीर के लोगों को कुदरती वसाइल के तहफ्फुज में संजीदगी का इजहार करना चाहिए। उन्होंने दरियाई जहलिम की शान रफ्ता बहाल करने की जरूरत पर जोर दिया है। सेंट्रल सेरिकल्चर रिसर्च एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट पापोर की तरफ से एनआईएफटी बड़गाम में माहौलियात के आलमी दिन के मुनासिबत से सॉयल साइंटिस्ट मीट 2026 का इनेकाद किया गया। इस मौके पर वहां शजरकारी मुहिम भी शुरू की गई। इस मौके पर डायरेक्टर सेरिकल्चर कश्मीर एजाज अहमद भट्ट के अलावा कई दीगर अहम शख्सियात भी मौजूद थी। बाद में मीडिया नुमाइंदों के साथ बात करते हुए उन्होंने कहा,
2: हम देख रहे हैं कि सस्टेनेबल जो सरी कल्चर है वो कैसे हम डेवलप करेंगे, कैसे इसको ग्रूम करेंगे, लीफ ऑफ क्वालिटी जो है उसको ठीक करना है, जो काफी स्पीसीज हैं सीड में वो कैसे हम अच्छा बनाएंगे ताकि यहाँ की प्रोडक्शन अच्छी बने। एवरी प्लांट इज मस्ट, वेदर इट इज मलबेरी, वेदर इट इज पाइन, वेदर इट इज एप्पल, वेदर इट इज चिनार, वेदर इट इज पॉपुलर, जो भी है, तो हम किस तरह से प्लांट को ठीक करेंगे। ज्यादा से ज्यादा हम इसमें जो वर्मी कम्पोस्ट है, जो ऑर्गेनिक है, उसका यूज हो। बाई डिफॉल्ट ये ऑर्गेनिक है, लेकिन इसको ऑर्गेनिक रखना है फ्यूचर के लिए।
1: वज़ीर-ए-आला उमर अब्दुल्ला ने आज बेंगलुरु में एक तकरीब के हाशिए पर कर्नाटक के वज़ीर-ए-आला जी के शिवाकुमार के साथ मुलाकात की और उन्हें कर्नाटक का वज़ीर-ए-आला बनने पर मुबारकबाद दी है। ये खबरें आप आकाशवाणी श्रीनगर से सुन रहे हैं। खबरें आप आकाशवाणी की मोबाइल एप्लीकेशन न्यूज ऑन AIR और DTH पर भी समाप्त कर सकते हैं। साइंस और टेक्नोलॉजी के मरकजी वजीर डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने आज जम्मू में कायम किए गए महकमे मौसमियात के इलाकाई मरकज का इफ्तिताह किया। उन्होंने कहा कि इस सहूलत से जम्मू कश्मीर, लद्दाख और हिमाचल प्रदेश में लोगों तक मौसम से मुतल्लिक बरवक्त जानकारी पहुंचाने में मदद मिलेगी। मीडिया से बात करते हुए वजीर मौसूफ ने कहा,
3: वेदर रडार बिल्कुल उपलब्ध नहीं थे, अभी कुछ ही सालों में हमने चार जगह स्थापित कर दिए हैं, जम्मू, श्रीनगर, बनिहाल, ले, और बहुत जल्द पांच और स्थापित होने वाले हैं, डोडा, किश्तवाड़, राजौरी, अनंतनाग, बारामूला। इसी प्रकार रेनफॉल मॉनिटरिंग सिस्टम जम्मू कश्मीर में केवल और केवल 30 थे, हमने 55 उसमें जोड़ दिए, आज बढ़कर के 85 हो गए। तो इस कदर जब विस्तार हुआ तो दिल्ली के रीजनल सेंटर को तीन हिस्सों में तकसीम किया गया है। एक रहेगा जम्मू में, जम्मू रीजनल सेंटर जम्मू कश्मीर, लद्दाख और हिमाचल को कवर करेगा। दूसरा रहेगा दिल्ली में, जो दिल्ली और गिर्दोनवा के जो प्रदेश है, हरियाणा, पंजाब इत्यादि, और तीसरा रहेगा लखनऊ, जो उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड को कवर करेगा।
1: वज़ीर सेहत सकीना ईतू ने कहा है कि सरकार जम्मू कश्मीर के गैर मारूफ सियाती मकामात को सियाहत के नक्शे पर लाने के लिए ठोस इकदाम कर रही है। कुलगाम में जिला अफसरान की एक मीटिंग के दौरान उन्होंने कहा कि जिले के पांच चनपत्री इलाके में सियाहत के बुनियादी ढांचे को फरोग दिया जाएगा। उन्होंने जिला इंतजामिया और महकमे सियाहत के अफसरान को इस बारे में जरूरी कार्रवाई शुरू करने की हिदायत दी। چیف سیکرٹری اٹل ڈلو نے زرعی سیکٹر کو ترقی کی نئی منازل سے ہمکنار کرانے کے لیے کسانوں کے حق میں زرعی قرضہ سکیموں کی مؤثر عمل آوری پر زور دیا ہے. وہ آج سری نگر میں ایک میٹنگ کے دوران ان سکیموں کی پیش رفت کا جائزہ لے رہے تھے. اٹل

जय हिंद दोस्तों। फिल्मी नगमों पर मैं अपने फौजी भाइयों के प्रोग्राम लेकर इस वक्त आकाशवाणी करगिल से हम हाजिर खिदमत है। प्रोग्राम सुनने वाले सभी फौजी भाइयों को हमारे ओर से खुलूस भरा आदाब। और आज के इस प्रोग्राम में खैर मकदम पेश करते हैं दोस्तों। आज के इस प्रोग्राम में आप चंद मुंतखब नए तर्ज के फिल्मी नगमे समाप्त करेंगे।

अभी प्रोग्राम के आगाज में आपने मर्डर फिल्म से नगमा सुना। गायक कलाकार थे अमीर जमाल। ये नगमा लिखा था सईद कादरी ने और मौसीकी तरतीब दी थी अन्नू मलिक ने। दोस्तों प्रोग्राम की अगली पेशकश उदित नारायण, अलका याग्निक और मनप्रीत अख्तर की आवाज़ों में ये नगमा। फिल्म का नाम है कुछ कुछ होता है।

दोस्तों, यह प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए डर फिल्म से नगमा, गायक कलाकार है उदित नारायण। ये नगमा लिखा है आनंद बख्शी ने और मौसीकी तरतीब दी है शिव हरी ने।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: नई वॉशिंग मशीन
2: अच्छा है।
3: यस। क्या हुआ?
1: अरे शॉपिंग पे 2000 का कैशबैक मिला है, बस QR कोड स्कैन करना है।
2: अच्छी धुलाई होगी,
1: है ना?
2: बैंक अकाउंट की, पैसे लेते वक्त QR कोड स्कैन, पिन या OTP की जरूरत नहीं होती, उनके सिर्फ पेमेंट के लिए जरूरत पड़ती है। इसीलिए नामालूम कोड या लिंक से चौकन्ने रहिए और नुकसान से बचिए।
1: बच गए धुलाई से।
2: ये नई धुलाई RBI कहता है
4: जानकार बनिए, चौकन्ने रहिए।

जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: वापसी के बाद फौजी भाइयों को फिर से अपने प्रोग्राम में खैर मकदम पेश करते हैं। दोस्तों आप सुनते रहिए प्रोग्राम आकाशवाणी करगिल।
2: और मैं चुपचाप बर्दाश्त करता रहा सिर्फ इसलिए कि एक दिन तुम्हारी ये बेवजह नफरत मोहब्बत में बदल जाएगी, लेकिन अब मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। अंजलि झूठ नहीं बोल रही, मैं तुम्हारी हर बात मानने को तैयार हूं, लेकिन ये बात मानने को तैयार नहीं कि इसके चरित्र पे दाग है।

धड़कन अभी अपने इस फिल्म से नगमा सुना, मिली जुली आवाज़ें थी उदित नारायण और अलका याग्निक की। ये नगमा लिखा था समीर ने और मौसीकी तरतीब दी थी नदीम शवन ने। फौजी भाइयों, प्रोग्राम का अगला गीत हमने इंतखाब किया है सुखविंदर सिंह और सपना अवस्थी की आवाज़ों में। ये नगमा फिल्म का नाम है दिल से।

फौजी भाइयों, प्रोग्राम की आखिरी नजर दीजिए, समाप्त करें। सोनू निगम और अलका याग्निक की आवाजों में ये नगमा, फिल्म का नाम है कुछ कभी खुशी कभी गम। ये नगमा लिखा है समीर ने और मौसीकी तरतीब दी है संदेश।

दोस्तों, इसी नगमे के साथ ही फौजी भाइयों के लिए हमारे आज के प्रोग्राम का वक्त भी अख्तितम को पहुंचा। हम आपसे इजाज़त तलब करना चाहेंगे। दोस्तों, आप जहां भी रहे हमेशा खुश रहिएगा और अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। जय हिंद।

अभी आप प्रोग्राम समाप्त कर रहे थे फौजी भाइयों के लिए। हम आकाशवाणी करगिल से आपसे मुखातिब हैं। समय अभी खबरों का वक्त हुआ जाता है। आप हम आकाशवाणी दिल्ली से हिंदी, अंग्रेजी और उर्दू खबरनामा रिले करेंगे। रिले का आप इंतजार कीजिए।

0: सूरत और दमण में कई विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया। प्रधानमंत्री ने ऊर्जा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता पर बल दिया। कहा, भारत आर्थिक विकास और पर्यावरण संरक्षण के बीच संतुलन बनाकर हरित भविष्य की ओर अग्रसर। वित्त वर्ष 2025-26 में भारत की सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि दर 7.7% रहने का अनुमान। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, स्मार्ट बॉर्डर परियोजना लागू किए जाने के अंतिम चरण में संवेदनशील सीमावर्ती क्षेत्रों में अगले वर्ष इसे प्रायोगिक आधार पर शुरू किया जाएगा। दक्षिण पश्चिम मॉनसून अरब सागर, गोवा और कर्नाटक के कई क्षेत्रों में पहुंचा और भारत पाकिस्तान को 5-3 से हराकर अंडर 18 एशिया कप हॉकी के फाइनल में पहुंचा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज सूरत और दमण में कई विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दमण में 9,270 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया। प्रधानमंत्री ने नमो अस्पताल और नमो हवाई अड्डे का भी उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री इस समय एक जनसभा को संबोधित कर रहे हैं, आइए सुनते हैं।
1: मैं देशवासियों को आर्थिक क्षेत्र की इस नई ऊंचाई को प्राप्त करने के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं और मैं देश को फिर आश्वस्त करता हूं कि देश दुनिया भर में चल रहे इन संकटों का सामना करते हुए रिफॉर्म, परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म के रास्ते पर ऐसे ही दृढ़ संकल्प के साथ तेज गति से आगे बढ़ता ही रहेगा, ये मेरी देशवासियों को गारंटी है। साथियों, आज हमारे लिए विकास जितना जरूरी है उतना ही अहम है हमारे विकास का मॉडल सस्टेनेबल हो।
0: गुजरात के सूरत में आज 18,000 करोड़ रुपए से अधिक की विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि दुनिया हरित भविष्य की ओर बढ़ रही है और भारत आर्थिक विकास तथा पर्यावरण संरक्षण के बीच संतुलन बनाकर इस दिशा में अग्रणी भूमिका निभा रहा है।
1: आज भारत प्रकृति के साथ प्रगति का मंत्र लेकर विकास कर रहा है, इकोनॉमी भी इकोलॉजी भी। सूरत में तो ये प्रत्यक्ष दिखता है। आजकल सूरत की सर्कुलर वाटर इकोनॉमी की बहुत चर्चा होती है। यहाँ शहर के वेस्ट वाटर को ट्रीट करके इंडस्ट्री को सप्लाई किया जाता है, इससे गंदे पानी का मैनेजमेंट भी हो जाता है और पानी से कमाई भी होती है।
0: श्री मोदी ने कहा कि भारत की कुल 250 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता में से 50 गीगावाट क्षमता अकेले गुजरात में है। उन्होंने कहा कि गुजरात सौर ऊर्जा से आगे बढ़कर ग्रीन हाइड्रोजन और ग्रीन अमोनिया के क्षेत्र में भी बड़ी भूमिका निभाने जा रहा है। ये भारत को ऊर्जा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। प्रधानमंत्री ने कहा कि आज हम सौर ऊर्जा उत्पादन में 5 प्रमुख देशों में से एक हैं।
1: ये जो वैश्विक संकट चल रहा है ये दिखाता है कि एनर्जी के मामले में आत्मनिर्भरता कितनी जरूरी है और बीते 12 वर्षों में देश ने जो कैपेसिटी तैयार की है उसका कितना बड़ा महत्व है। 12 वर्ष पहले भारत में सौर ऊर्जा का उत्पादन नाम मात्र का था, आज हम दुनिया के टॉप 5 देशों में से एक हैं।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि देश की जनता ने सदैव अराजकता और अस्थिरता की राजनीति को नकारकर विकास को प्राथमिकता दी है। उन्होंने लोगों से विकसित भारत के सपने को साकार करने के लिए एकजुट होकर काम करने की अपील की। सूरत के विकास का उल्लेख करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि सूरत एक ग्रीन सिटी के रूप में तेजी से आगे बढ़ रहा है।
1: सूरत सिर्फ स्वच्छता और सर्कुलर इकोनॉमी तक ही सीमित नहीं है बल्कि ग्रीन ग्रोथ के दूसरे माध्यमों का भी अभूतपूर्व गति से विस्तार हो रहा है। सूरत ऐसी व्यवस्था बनाने में जुटा है जहां सड़कों पर चलने वाली सारी बसें इलेक्ट्रिक होंगी।

0: अमित शाह ने कहा है कि सीमा सुरक्षा को अधिक मजबूत बनाने के लिए केंद्र सरकार स्मार्ट बॉर्डर परियोजना को अंतिम रूप दे रही है। गृह मंत्री आज त्रिपुरा में भारत बांग्लादेश सीमा पर लंका मोरा सीमा चौकी क्षेत्र में प्रहरी सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे।
1: हमने तय किया है कि बीएसएफ जहां जहां है, एसएसबी जहां जहां है, वहां पर स्मार्ट बॉर्डर का निर्माण करना और एक चतुष्कोणीय सुरक्षा रणनीति के तहत स्थानीय प्रशासन को साथ में लेते हुए, टेक्नोलॉजी को साथ में लेते हुए सीमाओं को एकदम अभेद बनाना। और एक स्मार्ट बॉर्डर का कंसेप्ट फाइनलाइजेशन के स्टेज पर है। इसका पायलट प्रोजेक्ट आने वाले साल में हम निश्चित रूप से इंट्रोड्यूस कर देंगे। एक साथ देश की अलग अलग सीमाओं पर 7 या 8 जगह पे पायलट प्रोजेक्ट्स दिए जाएंगे।
0: गृह मंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल और बिहार की सीमाओं पर घुसपैठ के कारण जनसंख्या में किसी भी तरह के बदलाव को बर्दाश्त नहीं करेगी। उन्होंने बताया कि सीमा सुरक्षा को मजबूत करने के लिए बाड़ लगाने का काम प्राथमिकता पर किया जा रहा है। इसी कड़ी में त्रिपुरा में 119 किलोमीटर लंबी सीमा पर नई डिजाइन की बाड़ लगाने को मंजूरी दी गई है। इसका पहला चरण शुरू हो चुका है। कार्यक्रम में त्रिपुरा के मुख्यमंत्री माणिक साहा, सीमा सुरक्षा बल के महानिदेशक प्रवीण कुमार तथा कई अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: है स्कीम के टेलीलॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेलीलॉ के टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। वित्त वर्ष 2025-26 में भारत की आर्थिक वृद्धि दर बरकरार रहेगी। वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद में पिछले वित्त वर्ष के 7.1% की तुलना में 2025-26 में 7.7% की वृद्धि का अनुमान है। एक रिपोर्ट।
2: सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के अनुसार वर्ष 2025-26 में वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद 323 लाख करोड़ रुपए से अधिक हो जाएगा। प्राथमिक क्षेत्र में 3.2% की वृद्धि दर देखी गई है, जो मुख्य रूप से कृषि और मत्स्य पालन क्षेत्रों के प्रदर्शन से प्रेरित है। वित्त वर्ष 2025-26 की चौथी तिमाही में भारत की वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि दर 7.8% रहने का अनुमान लगाया गया है। वर्ष 2025-26 की चौथी तिमाही में वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद 87,77,000 करोड़ रुपए रहने का अनुमान है। मुख्य आर्थिक सलाहकार डॉक्टर वी अनंत नागेश्वरन ने कहा कि वैश्विक अनिश्चितताओं के बावजूद सरकार ने आर्थिक स्थिरता बनाए रखने के लिए कई सक्रिय कदम उठाए हैं। अंकित की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से आनंद पाठक।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि ये सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि दर भारतीय अर्थव्यवस्था की मजबूती, सुधारों की सफलता और 140 करोड़ भारतीयों के अथक परिश्रम को दर्शाती है। श्री मोदी ने कहा कि सरकार लोगों के जीवन को सुगम बनाने, व्यापार में सुगमता और युवाओं के लिए अवसरों को बढ़ाने के हर संभव प्रयास करेगी। मई माह में भारत की यात्री वाहन बाजार में लगभग 4,40,000 वाहनों की बिक्री हुई है। ये पिछले वर्ष की तुलना में 23% अधिक है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने सोशल मीडिया पोस्ट में ऑटोमोबाइल सेक्टर के मजबूत प्रदर्शन का उल्लेख करते हुए कहा कि वैश्विक अनिश्चितताओं के बावजूद ये वृद्धि मजबूत उपभोक्ता मांग को दर्शाती है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि अंडमान द्वीप समूह के पूर्वी तट से लगभग 15 किलोमीटर दूर श्री विजयपुरम में प्राकृतिक गैस का भंडार मिला है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री पुरी ने कहा कि ये खोज अंडमान सागर की विशाल ऊर्जा क्षमता दर्शाती है। उन्होंने कहा कि ये खोज इस क्षेत्र में चल रहे अन्वेषण अभियान की सफलता का प्रतीक है। श्री पुरी ने कहा कि प्राकृतिक गैस का भंडार 355 मीटर की गहराई पर मिला है। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि दिल्ली के मालवीय नगर में हुई आग की घटना में 13 विदेशी नागरिकों की मौत हुई है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने आज नई दिल्ली में बताया कि मृतकों में एक व्यक्ति मोजाम्बिक, 4 नाइजीरिया, 1 लाइबेरिया, 3 किर्गिस्तान, 1 उज्बेकिस्तान, 1 बांग्लादेश, 1 कांगो और 1 इराक का नागरिक था। भारत अमेरिका के बीच व्यापार समझौते के बारे में प्रवक्ता ने कहा कि दोनों देशों के बीच हुई बातचीत सकारात्मक रही।
3: The negotiating team which came from
4: बातचीत करने वाली टीम

0: यूनाइटेड स्टेट्स ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव के कार्यालय से आई थी। इसमें अमरीकी पक्ष के मुख्य वार्ताकार भी शामिल थे। ये बातचीत इस महीने की 1 और 4 तारीख के बीच हुई। ये चर्चा सकारात्मक और रचनात्मक रही है और दोनों पक्षों ने द्विपक्षीय व्यापार समझौते को आगे बढ़ाने की अपनी प्रतिबद्धता को दोहराया।
1: ट्रेड अग्रीमेंट फॉरवर्ड।
2: नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल 3 दिन की भारत यात्रा पर

0: तथा निवेश शामिल हैं। इसलिए जब दोनों देशों के विदेश मंत्री मिलेंगे तो इन सभी संबंधों पर चर्चा होगी। हम नेपाल के साथ अपनी इस बहुआयामी साझेदारी को और मजबूत करने के इच्छुक हैं।
1: पार्टनरशिप दैट वी हैव विद नेपाल।
2: विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर कल नेपाल के विदेश मंत्री से बातचीत करेंगे। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं।
3: हर उड़ान से पहले एक फैसला होता है, हर फैसले से पहले एक सवाल, क्या मैं तैयार हूँ? अगर जवाब है हाँ, तो भारतीय वायुसेना आपका इंतजार कर रही है। ASCAT 1 of 2026 के आवेदन 10 नवंबर से 9 दिसंबर तक खुले हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें careerairforce.gov.in या ASCAT.edcil.go.in पर।
2: रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने भारत को रूस के पांचवीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान सुखोई SU-57 देने की पेशकश की है। उन्होंने इस विमान के भारत में संयुक्त उत्पादन का भी प्रस्ताव दिया है। सेंट पीटर्सबर्ग आर्थिक मंच में श्री पुतिन ने कहा कि रूस भारत के साथ एकीकृत वायु रक्षा प्रणाली और अन्य महत्वपूर्ण रक्षा उपकरणों के उत्पादन में सहयोग करने के लिए तैयार है। भारत वर्तमान में अपनी स्वदेशी वायु रक्षा प्रणाली सुदर्शन चक्र विकसित कर रहा है। इसमें रूस से प्राप्त S-400 मिसाइल रक्षा प्रणाली की महत्वपूर्ण भूमिका है। भारत ने तथाकथित गिलगित बाल्टिस्तान असेंबली का आम चुनाव कराने की पाकिस्तान की योजना पर कड़ा विरोध किया है। इस क्षेत्र पर पाकिस्तान का अवैध और जबरन कब्जा है। ये चुनाव 7 जून को होने वाले हैं। भारत ने अपने इस पुराने रुख को दोहराया है कि वर्ष 1947 से जम्मू कश्मीर के भारत में पूर्ण कानूनी और अपरिवर्तनीय विलय के परिणाम स्वरूप गिलगित बाल्टिस्तान सहित जम्मू कश्मीर और लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश भारत के अभिन्न अंग हैं। इंडोनेशिया के विदेश मंत्री सुग्यानो 3 दिन की भारत यात्रा पर कल नई दिल्ली पहुंचेंगे। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर और सुग्यानो रविवार को नई दिल्ली में भारत इंडोनेशिया संयुक्त आयोग की बैठक की सह अध्यक्षता करेंगे। भारत अंडर 18 हॉकी टूर्नामेंट के फाइनल में पहुंच गया है। जापान के काका मिगाहारा में आज सेमीफाइनल में भारत ने पाकिस्तान को 5-3 से हरा दिया। भारत की ओर से आशीष तानीपूर्ति ने 4 गोल किए, शाहरुख अली ने 1 गोल किया। फाइनल में कल भारत का सामना जापान से होगा। इससे पहले अंडर 18 लड़कियों की टीम सेमीफाइनल में चीन से हार गई थी। मौसम विभाग ने बताया है कि दक्षिण पश्चिम मॉनसून अरब सागर में गोवा और कर्नाटक के कई क्षेत्रों में पहुंच गया है। तमिलनाडु और बंगाल की खाड़ी में भी ऐसी स्थिति बनी हुई है। विभाग के अनुसार अरब सागर, कर्नाटक, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश के अधिकतर हिस्सों के साथ साथ गोवा, तमिलनाडु और बंगाल की खाड़ी में दक्षिण पश्चिम मॉनसून पहुंचने की संभावना है। विभाग के अनुसार अगले 2-3 दिन के दौरान बंगाल की खाड़ी के कई क्षेत्रों के साथ साथ पूर्वोत्तर राज्यों में ऐसी ही स्थिति बनी रहेगी। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सूरत और दमण में कई विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया। प्रधानमंत्री ने ऊर्जा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता पर बल दिया। कहा, भारत आर्थिक विकास और पर्यावरण संरक्षण के बीच संतुलन बनाकर हरित भविष्य की ओर अग्रसर। वित्त वर्ष 2025-26 में भारत की सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि दर 7.7% रहने का अनुमान। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, स्मार्ट बॉर्डर परियोजना लागू किए जाने के अंतिम चरण में संवेदनशील सीमावर्ती क्षेत्रों में अगले वर्ष इसे प्रायोगिक आधार पर शुरू किया जाएगा। और भारत पाकिस्तान को 5-3 से हराकर अंडर 18 एशिया कप हॉकी के फाइनल में पहुंचा। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
4: गुड इवनिंग, दिस इज आकाशवाणी। आई एम अनुजा कुमार विद द न्यूज एट 9। The headlines. Prime Minister Narendra Modi launches multiple development projects in Gujarat and Daman. Prime Minister emphasizes on self-reliance in energy sector, says India actively leading towards green future by balancing economic growth and ecological preservation. Country's GDP growth rate estimated at 7.7% in 2025-26 following strong momentum by the economy. Home Minister Amit Shah says Smart Border Project in its final execution stage. Pilot rollout to be introduced next year at sensitive border locations. southwest monsoon advances further into more parts of Arabian Sea.

0: Goa and Karnataka, and in hockey, India enter final of men's under-18 Asia Cup, beating Pakistan 5-3 in semi-final at Kakamigahara in Japan. And now the news in detail. Prime Minister Narendra Modi has emphasized self-reliance in the energy sector, stating that the world is moving towards a green future and India is actively leading the way by balancing economic growth with ecological preservation. Addressing a large gathering after launching various infrastructure projects worth over 18,000 crore rupees in Surat today, the Prime Minister pointed out that out of India's total renewable energy capacity of 250 gigawatts, Gujarat alone contributes 50 gigawatts, accounting for a crucial one-fifth of the nation's green energy share. He said the current global energy crisis highlights the critical importance of self-reliance in energy. He said the world is gradually progressing towards a greener future and India is actively contributing to this transition.
1: ये जो वैश्विक संकट चल रहा है, ये दिखाता है कि एनर्जी के मामले में आत्मनिर्भरता कितनी जरूरी है और बीते 12 वर्षों में देश ने जो कैपेसिटी तैयार की उसका कितना बड़ा महत्व है। 12 वर्ष पहले भारत में सौर ऊर्जा का उत्पादन नाम मात्र का था, आज हम दुनिया के टॉप 5 देशों में से एक हैं।
0: Speaking on the transformation of Surat, the Prime Minister praised the city's spirit and its transition into a green city.
1: सूरत सिर्फ स्वच्छता और सर्कुलर इकोनॉमी तक ही सीमित नहीं है बल्कि ग्रीन ग्रोथ के दूसरे माध्यमों का भी अभूतपूर्व गति से विस्तार हो रहा है। सूरत ऐसी व्यवस्था बनाने में जुटा है जहां सड़कों पर चलने वाली सारी बसें इलेक्ट्रिक होगी, साथ ही यहां सूरत मेट्रो का भी विस्तार हो रहा है। ये सारे कदम हरित शहर के रूप में सूरत की पहचान को और सशक्त करेंगे।
0: After reaching Surat this afternoon, the Prime Minister first visited Hazira and reviewed the ongoing industrial and infrastructure operations. Later in the evening, Mr. Modi launched various projects worth around 2,970 crore rupees in Daman. These projects include major healthcare and aviation infrastructure.
1: आज भी यहाँ कनेक्टिविटी, हेल्थ, एजुकेशन, टूरिज्म और अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर, इनसे जुड़ी अनेक परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास हुआ है। विकास के ये काम दमन और पूरी यूनियन टेरिटरी के लिए यहाँ के लोगों के जीवन को आसान बनाएंगे। इनसे युवाओं के लिए नए अवसर तैयार होंगे।
0: Prime Minister Modi has asserted that the foundation of the Indian economy remains exceptionally strong, with the nation recording a robust 7.7% growth in the fiscal year 2025-26, despite a global economic crisis.
1: वर्ष 2025-26 में भारत ने 7.7% की ग्रोथ रेट हासिल की है और पिछला क्वार्टर जो 31 मार्च को खत्म हुआ उसमें भी भारत की ग्रोथ 7.8% रही है और ये दुनिया में तेज गति से आगे बढ़ने वाली बड़ी इकोनॉमी है।
0: India's economy has maintained a strong momentum in 2025-26 with real gross domestic product GDP estimated to grow by 7.7% in comparison to 7.1% in 2024-25. The Ministry of Statistics and Program Implementation today released the provisional estimates of annual GDP for the financial year 2025-26 and quarterly estimates of January to March this year. It said the primary sector has observed 3.2% growth rate, mainly driven by the performance of agriculture and fisheries sectors. Addressing a press conference in New Delhi today, Secretary, Ministry of Statistics and Program Implementation Saurabh Garg said gross fixed capital formation recorded a robust growth of 8.2% in 2025-26.
2: Gross fixed capital formation, which represents the investment in the economy, that has been remarkable 8.2% in 2025-26, increasing from 6.4% in 2024-25. And gross fixed capital formation indicates that perhaps future growth should also be robust because it signifies

आदाब, ये आकाशवाणी है। जमीर रजवी से खबरें सुनिए। सबसे पहले इस वक्त की सुर्खियां। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने आज सूरत और दमन में बहुत से तरक्याती प्रोजेक्टों का आगाज किया। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने तवानाई के शोबे में खुद किफालत पर जोर दिया है। उन्होंने कहा है कि इक्तसादी पेशरफ्त को मुतवाजिन करके नीज माहौलियाती तहफ्फुज़ के जरिए भारत सरसब्ज मुस्तकबिल की जानिब फाल तौर पर क़यादत कर रहा है। मईशत में मजबूत रुझान के नतीजे में साल 2025-26 में मुल्क की जीडीपी की पेशरफ्त 7.7% रखी गई है।